अगर तुम दोनों अल्लाह के आगे तौबा करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल मायल हो ही गए हैं। और अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बाहम एयानत करोगी तो अल्लाह और जिब्रील और नेक किरदार मुसलमान उनके हामी और दोस्तदार हैं, और इनके अलावा सब फरिश्ते भी मददगार हैं। ए अज़वाज नबी, अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे बेहतर बीवियां दे दे। मुसलमान ईमान वालियां, फर्माबरदार, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार, रोजा रखने वालियां, शादीशुदा और कुंवारियां, मोमिनों अपने आप को और अपने अहलो आयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जिस पर तुंद खू और सख्त गिर फरिश्ते मुकर्रर हैं। वो किसी हुक्म की जो अल्लाह उनको देता है नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं। काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा।

काफिर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कयामत का कब पूरा होगा। कह दो कि इसका इल्म अल्लाह ही को है और मैं तो खोल खोल कर डर सुना देने वाला हूं, सो जब वो देख लेंगे कि वो अजाब करीब आ गया तो काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि ये वही है जिसके तुम तलबगार थे। कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह मुझको और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर मेहरबानी करे तो कौन है जो काफिरों को दुख देने वाले अजाब से पनाह दे। कह दो कि वो जो रहमान है हम उसी पर ईमान लाए और उसी पर भरोसा रखते हैं, तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में कौन पड़ा है। कहो कि भला देखो तो अगर तुम्हारा पानी जो तुम पीते हो और बरतते हो खुश्क हो जाए तो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारे लिए शफाफ पानी का चश्मा बहा लाए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो, हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी ना होगी, और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूं, मेरा दांव बड़ा मजबूत है। ऐ नबी, क्या तुम इनसे कुछ मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है, या इनके पास गैब की खबर है कि उसे लिखते जाते हैं? सो अपने परवरदिगार के फैसले का इंतजार किए रहो, और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह न होना कि उन्होंने अपने रब को पुकारा जबकि वो दिल ही दिल में घुट रहे थे। अगर उनके परवरदिगार की मेहरबानी उनको न संभाल लेती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते मजमूम हालत में। फिर उनके परवरदिगार ने उनको बरगुजीदा करके नेकूकारों में शामिल कर लिया। और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फिसला देंगे, और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। और लोगों, ये कुरान तमाम जहानों के लिए नसीहत है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाँ नहीं अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمایا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل, कि बहुत से अहबार और रहबान लोगों के माल बातिल तरीके से खाते हैं। باطل طریقے کون سے تھے؟ مثلا اس پر ایک تاریخی واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اصفہان یعنی ایران کے علاقے کا ایک فارسی نسل نوجوان تھا. جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جش کے نام سے مشہور تھی. میرا باپ اس بستی کا سردار تھا. وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روب اور دبدبے کا مالک تھا. پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا. جو جو میری عمر بڑھتی گئی اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا. مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جیسے لڑکیوں کو گھروں میں پابند کیا جاتا ہے. میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی. اس میں بہت زیادہ محنت کی اور خاص مقام پیدا گیا جس

0: तो एज अ रिएक्शन टू दिस इसने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया लोगों को दीन से मुतनफर करने के लिए, इसलिए क्योंकि स्पेशली जो ईसाई है वो चर्च में एक दफा भी मेरे ख्याल से विजिट नहीं कर सकते थे कि इससे पहले कि वो जो है आर्म्स कहते हैं ALMS आर्म्स जो है वो चैरिटी डोनेशन होता था जो चर्च को देना जरूरी होता था। चाहे आप किसी भी काम के लिए जाएं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैड टू ड्रॉप मनी इन द बॉक्स एंड यू हैड टू पुट कॉइन्स प्रीस्ट के हाथों में। आप देखेंगे हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे कि इस चीज से बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ लोगों में और बहुत ज्यादा दीन से ये दूर हुए इस चीज की वजह से कि चर्च जो है उनको आम आदमी को इस तरह लगता था कि ये तो बिल्कुल मनी मेकिंग इंडस्ट्री बन गई है और ये बिजनेस है। और इसी तरह जो पोप था उसने, हमने पढ़ा था कि किंग का स्टेटस था पोप का एंड ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये सारी चीजें जो है ये इतनी इलॉजिकल और इतनी सेल्फिश किस्म की जो पॉलिसीज थी चर्च की, तो इसने इवेंचुअली मासेस में बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी के लिए एक नफरत और एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करी और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत सारे जो हैं वो क्रिश्चियंस टर्न्ड अवे फ्रॉम रिलीजन। और आज भी आप देखेंगे कि उनकी चर्च गोइंग पॉपुलेशन बहुत बहुत कम है और इसीलिए जो है ये नॉन रिलीजियस सेक्ट जो है ये इतना ज्यादा वेस्ट में बढ़ गया है। आप देखेंगे कि ये चाइना वगैरह में इतना नहीं है इस तरह से। इवन हिंदूज में यू विल फाइंड मोस्ट पीपल आर समवॉट फॉलोइंग देयर रिलीजन, बट द क्रिश्चियंस एंड जूज स्पेशली यू विल फाइंड कि बहुत ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल ही अपने दीन से टर्न अवे कर चुके हैं इस चीज की वजह से।
1: फिर कसूर तो हम जैसों का है ना, जो पहुंचते नहीं और बताते नहीं, वही ना बिदत से सुन्नत चली जाती। तो इसी तरह शिर्क का नुकसान क्या होता है कि अल्लाह ताला के हुकूक मारे जाते हैं। ये किसी ने लिखा है कि हम एक कमर्शियल एरिया में रहते हैं, मेरा भाई बता रहा था कि एरिया के तमाम दुकानदारों ने महीने की उजरत पर कारी साहब लगाए हुए हैं जो रोज सुबह आकर चंद मिनट कुरान पाक की तिलावत करते हैं बरकत के लिए, तो क्या हमें उनको सही बात बताकर रोक देना चाहिए? अब बात यह है कि इन तरीकों का नुकसान क्या हुआ है, यानी किसी कारी साहब को लगाकर दुकानों पर कुछ पढ़वा लेना, इसका नुकसान क्या है? खुद नहीं पढ़ते। अलबिदा तो तुम ही तो सुनना, बिदत आती तो सुन्नत चली जाती। ये एक नहीं दो मुख्तलिफ लोगों ने लिखकर दिया था, तो एक तो मैंने फेंक दिया और एक आपको पढ़कर सुनाया है, किसी और जगह पर भी ऐसा है। इट मीन्स कि इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। जब कारी साहब पढ़ते हैं तो वो सुनते भी नहीं, वो तो अपने और काम लगे रहते हैं। घरों में भी जब पढ़वाने के लिए बुलाते हैं तो घर वाले तो शरीक नहीं होते। आपको पता है कि हमारे मुसलमानों में अपने दीन पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं, इसकी क्या वजह? हम क्यों शर्मिंदा शर्मिंदा रहते हैं दीन पर पढ़ के या दीन पर चल के? हमें डर क्यों लगता है दीन पर चलने से? हम क्यों शर्माते झीमते रहते हैं अपने ही दोस्तों, अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही मुसलमान माशरे से? इसकी क्या वजह है? कॉन्फिडेंस नहीं, क्यों नहीं, उसकी क्या वजह है? इल्म नहीं है, पता ही नहीं है कि दीन है क्या चीज? अगर पता भी हो तो यकीन की हद तक उसका इल्म नहीं है ना, यानी यकीन और एतमाद नहीं है अल्लाह और उसके रसूल पर कि वो सच और हकीकत की बात हमें बताते हैं। और जिन लोगों को हम आइडियलाइज करते हैं वो लोग इस तरफ नहीं आते, तो फिर हमें एक कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि जिन लोगों से हम मुतासिर हैं, जिनको हम बड़ा समझते, वो तो इस तरफ है नहीं, तो फिर हम हो गए तो हमारी कोई सही नहीं होगी। तो आप लोगों के लिए नमूना बन जाए ना, आप आइडियल बन जाए कि लोग आपसे मुतासिर हुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारुकुम फिल इस्लाम, जो लोग जाहिलियत में बेहतरीन थे लोग उनको आइडियलाइज करते थे, इस्लाम को अगर पूरी तरह अख्तियार कर लें तो लोग इस्लाम में भी उनको आइडियलाइज करेंगे। तो आप क्यों नहीं ऐसे नमूने और मिसालें पेश करते कि जिसकी वजह से लोगों का कॉम्प्लेक्स दूर हो जाए? अंदर का डर है, अंदर का खौफ निकालने की जरूरत है। और अंदर का डर उसी वक्त निकलेगा जब ईमान आएगा, वो इसी डर से तो बचाया गया। तख्शौना हुम वलम यख्शा इल्लल्लाह। एक और बात यह है कि हम आपस में भी एक दूसरे को वतवासो बिलहक वतवासो बिसब्र नहीं करते, बल्कि उल्टा हम खुद ही एक दूसरे को मजाक के अंदाज में काम करने से रोकते हैं। कभी हमें ये नहीं पता चलता कि हम भी ये सुद्दूना अन सबीलिल्लाह कर रहे हैं। अगर एक शख्स किसी ने एक काम को अपनाने की कोशिश में लगा हुआ तो हम उसका मजाक उड़ाने लगेंगे।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आजकल शहरन तोड़े

0: ॻोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 हले थो। मूं पंहिंजो दुकानु खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जीअं मिरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मिरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301399283 6।

ते मिसाइल हमला उर्दन पारा पंज ईरानी मिसाइल नाकारा बणण जी दावा अमेरिकी फौज पारा उर्दन में ईरानी हमलन जी तस्दीक अमेरिकी फौज ईरानी हमलन जी तस्दीक कंदे चयो आहे ते ईरान तरफा फायर कयल समूरा मिसाइल दिफाई निजाम रोकिया आहिनि। ईरानी पासदारनि खिलाफ चयो आहे त उर्दन में अमेरिकी फौजी अॾे ऐं सेनेकाम जे मर्कज़ खे बैलिस्टिक मिसाइल सां निशानो बणायो आहे। उर्दन चयो आहे त ईरान पारां फायर कयल पंज मिसाइल नाकारा बणाया विया आहिनि।

विचोभर में नई जंग शुरू थी वही है। ऑयल रिफाइनरीज हमलन बाद सऊदी अरब के अमेरिका से गड इराक में कार्रवाई, ईरान के हामी ग्रुपन के थाकन के निशानो बनाया। सऊदी अरब के दिफा वारे वजीर है तो ऑयल से हमलो कदड़ ग्रुप्स के निशानो बनाया है। मुल्की सलामती है खुद मुख्तारी से को भी ठार नो। अमेरिकी फौज पारा भी इराकी ग्रुप्स खिलाफ कार्रवाई की तस्दीक कई वही। इराकी विड़ाक ग्रुप हमलन में वीह जन के मारजन की तस्दीक कर छी। पाकिस्तान के माली सहारो सऊदी अरब पाकिस्तान जो 5 अरब डॉलर जो कर्ज रोल ओवर कर छो। जरियन मूजिब सऊदी अरब यो कर्ज गड़ियल अरब इमारात के अदायगी लाए पाकिस्तान के 3 महीनों लाए दिनो हो। सऊदी अरब पारा 5 अरब डॉलर जो कर्ज 3 साल लाए रोल ओवर किया। स्टेट बैंक जो चवण है तो 5 अरब डॉलर रोल ओवर थियण बाद पाकिस्तान के नाणे की मटा सटा वाली पोजिशन मुस्तहकम थी है। परडे अदायगी जो दबाव फौरी घटी वो है।

जे इंतज़ाम बाबत इलाकाई निज़ाम जोड़ण वारी तजवीज़ रद्द करे छॾी आहे। हॉर्मुज़ में टिनि धुर जी शमूलियत क़बूलण खां इनकार। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त ओमान जे आबनाए हॉर्मुज़ खे ॿिनि मुल्कनि में हिकु जेतिरो विरिहाइण वारी तजवीज़ रद्द कई आहे। ईरान जे हदनि सामूंडी रस्तनि जी ज़िमेवारी तेहरान ऐं ओमान पंहिंजी सामूंडी हदनि जी ज़िमेवारी संभाले सघे थो। ओमान ईरान जो आबनाए हॉर्मुज़ बाबति मनसूबो रद्द कयो हो त हॉर्मुज़ बंदि ई रहंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा।
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुजे दुकान जी बे डरंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
5: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
5: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मश...

0: तोरी कराई थी
1: ना दा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पेंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराने ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
0: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरा पर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरा पर
0: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।

अमेरिकी फौज जा एक भेरो बीहर ईरान ते हमला। ईरान जे शहर अहवाज बो शहर बंदर अब्बास ए कशम में जोरदार धमाका बुधा वया। सेनेट मामलन जी तस्दीक कंदे चयो आहे ते विच ओभर में अमेरिकी फौजिन ते हमले जे जवाब में कार्रवाई कई वई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते वॾनि हमलनि जो धमकी ॾेई छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो त उर्दन में अमेरिकी फौजी अॾनि ते हमले जे जवाब में ईरान ते शदीद हमलो कयो वेंदो। ईरान जो अहिड़ो हशर कयो वेंदो जो यादि रखंदो। ईरान जे हामी वेड़ाकनि ख़िलाफ़ बेकारवायुनि जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। इराक में ईरानी प्रॉक्सीज़ दुनिया लाइ नासूर बणियल आहे। ईरान जा उर्दन में अमेरिकी अॾनि ते मिज़ाइल हमला। उर्दन पारां पंज ईरानी मिज़ाइल नाकारा बणाइण जी दावा। अमेरिकी फ़ौज पारां उर्दन में ईरानी हमलनि जी तस्दीक। अमेरिकी फ़ौज ईरानी हमलनि जी तस्दीक कंदे चयो आहे त ईरान तर्फ़ां फायर कयल समूरा मिज़ाइल दिफ़ाई निज़ाम रोकिया आहिनि। ईरानी पासदार इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमेरिकी फ़ौजी अॾे ऐं सेनेटकाम जे मर्कज़ खे बैलिस्टिक मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। उर्दन चयो आहे त ईरान पारां फायर कयल पंज मिज़ाइल नाकारा बणाया विया।

विचोभर में नई जग शुरू थी वई आहे। ऑयल रिफाइनरीज ते हमलनि बाद सऊदी अरब जे अमेरिका सां गॾु इराक में कार्रवाई। ईरान जे हामी ग्रुपनि जे थाकनि खे निशानो बणायो। सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त ऑयल रिफाइनरीज ते हमिलो कंदड़ ग्रुपनि खे निशानो बणायो आहे। मुल्की सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तारीअ ते को बि ठाह न थींदो। अमेरिकी फ़ौज पारां बि इराकी ग्रुप्स ख़िलाफ़ कार्रवाई जी तसदीक कई वई। इराकी फेड ग्रुप हमलनि में 20 ॼणनि जे मारजण जी तसदीक करे छॾी। पाकिस्तान खे माली सहारो। सऊदी अरब पाकिस्तान जो 5 अरब डॉलर जो कर्ज़ रूल ओवर करे छॾियो। ज़रियनि मूजिबि सऊदी अरब इहो कर्ज़ गॾियल अरब इमारात खे अदायगियुनि लाइ पाकिस्तान खे 3 महीननि लाइ ॾिनो हो। सऊदी अरब पारां 5 अरब डॉलर जो कर्ज़ 3 सालनि लाइ रूल ओवर कयो वियो। स्टेट बैंक जो चवणु आहे त 5 अरब डॉलर रूल ओवर थियण बाद पाकिस्तान जे नाणे जी मटा सटा वारी पोज़ीशन मुस्तक़िम थी आहे ऐं परॾेही अदायगियुनि जो दॿाउ फौरी घटिजी वियो आहे। सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर जे अमेरिकी सदर सां हंगामी मुलाक़ात। सऊदी वलीअहद जो पैगाम बि पहुचायो। अमेरिकी मीडिया जो चवणु आहे त सऊदी जे दिफ़ा वारे वज़ीर शहज़ादा ख़ालिद बिन सलमान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां मुलाक़ात कई। उन खां अॻु हिन नायब अमेरिकी सदर सां मुलाक़ात करे ईरान सां छिकताण घटाइण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर कई।

आज पीएनएस तैमूर जो अरबी समुंड कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन 19 माण्हुनि खे रेस्क्यू कयो वियो। मोहणनि जी ॿेड़ी गवादर खां 20 नॉटिकल मेल ॾखण में इंजन जी ख़राबी सबबि फासी पई हुई। ॿेड़ीअ में 11 पाकिस्तानी 8 ईरानियुनि समेत 9 ॼणा सवार हुआ।

सिविल अस्पताल मेयर जो सिक्योरिटी गार्ड हथियारबंद हथा कतल गोठ शहर जो दड़ो वासी रुस्तम उर्फ सागर खोसो ड्यूटी करे गोठ वही रो हो हथियारबंद खेस कतल कयो मढ़ जरूरी कार्रवाई ला अस्पताल मुंतकिल। थारू शाह भरसा पानी के वारे ता पीरसन सरोटा हणी कतल गोठ पीर पांधी में पानी के वारे ता पोरेत मोहरम राजपर के सरोटा हणी कतल कयो वयो लाश पोस्टमार्टम ला अस्पताल मुंतकिल कयो वयो। शायरन के सरताज हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 283 उर्स के बे डी जो तकरीबू पांधिड़न जो वो अंग भिटजी नगरी से मौजूद पेरे डी सुगढ़ कचहरी मल ए घोड़न की डोड़ जा मुकाबला राग रहाण की महफिल थी।

0: हिक वण सिंध मर्जे नाओ मोम जारी केटे न्यूज ऐं कावज जे सॾु ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीली खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मुहिम जारी मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वरजाओ
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीका कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. कॉमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/gfm88 के पेज के ऊपर आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और कमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ साथ इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज पे जहां जहां तक हो सके वहां वहां तक. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जहां जहां तक हो सके वहां वहां तक शेयर करें सो दैट हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएं और सबको बता पाएं कि जिंदगी गुलजार है. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा. स्टे ट्यून्ड.

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMB इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एस

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: GS खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर, अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: वाह, ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है. ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था. एक और ट्राई करेंगे. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से?
1: मैं अभी खलासा भाई बात कर रहा हूँ. खलासा.
0: ओके, पहली दफा कॉल कर रहे हैं भाई?
1: दूसरा कर रहे हैं. कस्टमर हूँ. कॉलेज में कॉल कर रहा हूँ. आज की तारीख में तमाम खुशियाँ.
0: अच्छा अच्छा, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रहा है. किसी सही जगह पे चले जाएं और एक अच्छा सा गाना सुना दें.
1: गाना सुना?
0: हाँ जी
1: जी. तेरी बेहतर ये गाना सुना.
0: हाँ जी, सुना दें सुना दें, बिल्कुल सुना दें. ओके, गाना सुनाने से पहले ही कॉल कट गई है. वेरी बैड, ऐसा होना नहीं चाहिए था. चले हम गाना प्ले करते हैं जी, और गाना चेक करेंगे कौन सा है.

0: टंग ट्विस्टर आज का कुछ इस तरीके से है कि
1: यू मांगता है कमजोर बाहों का सहारा.
0: आज आपने कह के दिखाना है कि काशिफ ने कॉफी के कई कप कतार में रखे, ठीक है, ये कहना है. इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप. कहा गया, काशिफ ने कॉफी के कई कप कतार में रखे, ठीक है, ये कहेंगे. जब आप ये कहेंगे तो क्या करेंगे, जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को, ठीक है जी. तो ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेंगे और ज्यादा ज्यादा सही सही जो बंदा बोलेगा वो विन कर जाएगा. अच्छा, बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स भी आप लोगों के मुझे रिसीव हो चुके हैं, जो बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस को भी इंक्लूड करेंगे. लेकिन उससे पहले हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे. और जब हम वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा हरा भरा पाकिस्तान. एंड देन फिर हम जो है ना कर रहे होंगे टंग ट्विस्टर वाला सेगमेंट. ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

अमेरिकी फौज एक बेरो बीहर ईरान ते हमला ईरानी शहर अहवाज बो शहर बंदर अब्बास ऐं कश्म खे निशानो बणायो वियो। कश्म में अमेरिकी हमले जे नतीजे में टे शहरी शहीद ब ज़ख़्मी। ईरान जे बे अमेरिका ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते मिज़ाइल हमला। अमेरिकी फौज मौजूद विच ओभर में अमेरिकी फौजनि ते हमले जे जवाब में ईरान ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई। ईरान जे बे अमेरिका ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते हमलो। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल हमला नाकाम बणाइण जी दावा।

सदर आसिफ अली ज़रदारीअ सां वफ़ाक़ी गरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मुलाक़ात, बलोचिस्तान ऐं केपी के समेत मुल्क जे अमुन अमान जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन बाबति सदर खे आगाह कयो। सदर आसिफ ज़रदारी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फोर्सिस जी सलाहियतुनि जी वाखाण कई।

पंजाब जे शहर लाहौर में घर जी छित किरी पई, 10 ॼणा दॿिजी फोत थी विया, 3 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। लाहौर जे बागानपुरा में घर जी छित किरण वारो वाकियो पेश आयो आहे। रेस्क्यू अमलदारनि मूजिबि घर जे मलबे हेठां 10 ॼणनि जा लाश ऐं 3 ज़ख़्मियुनि खे कढियो वियो आहे। फोतियुनि जा मड़ ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे।

बी समुंड में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, उणवीह माण्हुनि खे रेस्क्यू कयो वियो। माण्हुनि जी ॿेड़ी गवादर खां 20 नॉट मेल जे फ़ासले ते फासी पई हुई। ॿेड़े में 11 पाकिस्तानी ऐं 8 ईरानी समेत 9 उणवीह मुहाइणा सवार हुया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302-01800-003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जीअं मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है क्योंकि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ टच होता है खंजराब साइड से, और ये एक ऐसा इलाका है जो कि जमीनी जोग्राफियाई अपने हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ट्रेड रूट्स के हवाले से हो, चाहे वो मादनियात के हवाले से हो, और इसी तरह से ये कपास के हवाले से भी मशहूर है क्योंकि ये चीन का सबसे बड़ा कपास पैदा करने वाला इलाका है। इसकी जो मजमुई पैदावारी हिस्सा है पूरे चीन की पैदावार में, तकरीबन कहते हैं कि 80 से 90% जो है वो सिंकियांग से हासिल होता है, और यहाँ 5.5 से 6 मिलियन टन तक की पैदावार जो है वो पहुंच जाती है। रीजन क्या है? रीजन है कि जरई जमीन जबरदस्त है, मुनासिब आबो हवा है, वहां की धूप जो है वो तवील दौरानिये तक रहती है, और फिर खास तौर पर जो मेहनत की गई है, कुछ तो कुदरती चीजें मिल गई लेकिन उसके बाद जो मेहनत है वो मॉडर्न जो इरिगेशन सिस्टम है उसको वहां पर अपनाया गया है, क्योंकि सिंकियांग में कपास की जो चुनाई का जो मरहला है वो 90% से ज्यादा मशीनों के जरिए किया जाता है। इसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूं, मैंने भी कई ऐसे इलाके सिंकियांग में विजिट किए हैं जहां पर मशीन के

0: तहजीब खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
5: खुश खबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: कदमों में सर रखकर अपना प्यार इसे दिखाएंगे। आगे आ गया मिसिंग पार्ट, स्टोरी रह गई अधूरी। ओके, एक और शेर है, कहते हैं कि इश्क भी क्या चीज है, पल भर में खुशियां पल भर में गम देता है, दिन से लेकर रात तक। आगे मिसिंग पार्ट है, आपकी सारी पोइट्री मिसिंग पार्ट आई है। ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल से आप जो है ना जल्दी जल्दी मैसेजेस करते होंगे, तो जो मैसेज होता होगा वो पूरा नहीं आ पाता होगा और दूसरा आ जाता होगा, पहला वाला आधा आता होगा। तो ये कुछ ऐसा सीन है या फिर कोई और मसला है, कोई और इशू है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम कमेंट्स की तरफ भी मूव करते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं आप लोगों के मेरे पास, और साथ साथ कॉल कर रहे हैं आप लोग 03000131488 के ऊपर। और नजीर खोसो ने हमें ज्वाइन किया है सोबरपुर बलोचिस्तान से, थैंक यू सो मच। रजाक, नहीं सॉरी, अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाजिद सिंधी हमें सुन रहे हैं, सलाम कैसी हो, नाइस शो आपका। मैं बहुत अच्छी हूँ। एक और कॉलर लेने जा रहे हैं लाइन पे, हेलो।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: मैं नदीम अहमद।
0: नदीम अहमद कैसे, ठीक ठाक?
1: अल्लाह।
0: ओके, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: नहीं नहीं, आप ये प्रोग्राम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि या प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं
1: प्रोग्राम का?
0: ओके, मुझे बताएं कि टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे
1: ये?
0: सॉरी, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है।
1: बहुत बहुत

हेलो, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है. मजबूरन मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी. दोबारा से ट्राई करें और मेक श्योर जब आप कॉल करें तो आप हेडफोन्स वगैरह निकाल दिया करें या किसी ऐसी जगह पे जाके बात मत किया करें जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अंदर कहीं छुप के बात करेंगे आवाज सही से जाएगी. नहीं जाएगी सही से क्योंकि सिग्नल्स नहीं आते प्रॉपर. ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखते हुए उस जगह पे जाके कॉल करें जहाँ पे सिग्नल अच्छे आ रहे हो. नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो हेलो, इनकी तो आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है. क्या किया जाए, एक गाना प्ले करें क्या? आगे गाना प्ले करते हैं, हियर कम्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे.

0: सखर
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

Yogesh, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, यहाँ कर मेरा साल पूरे पूरे एक बजे तक का है और हमारा सेगमेंट बोलो तो माने जिसमें आप लोग कह के दिखा रहे हैं एक अदर टंग टस्टर और कॉल कर रहे हैं 03000113488। टंग टस्टर है जी, काशिफ ने कॉफी के कई कप कतार में रखे, ठीक है, ये कहना है। और जो बंदा ये बोलेगा सही सही ज्यादा ज्यादा और अच्छा अच्छा बोलेगा वो विन करेगा इस सेगमेंट को, ठीक है। तो कॉल कर सकते हैं आप लोग 03000113488। वाजिद सिंधी ने हमें कमेंट किया है, रुखसार कैसी हो, शो नाइस है, नाइस के अलावा और क्या है शो, जल्दी से बताएं। गुलाम मोहम्मद मनी बलोच लिखते हैं कि आप ही रुखसार, कल तो आपने भिटजा भिटाई नहीं चलाया था, नहीं लगाया था, अच्छा।

इसी के साथ साथ जी आगे और 03000113488. अच्छा, इसके अलावा हमें सफदर बलोच के मैसेज आए हैं. एक और शेर लिखा है, खुशियां नसीब हो उसे दुआ करता हूँ, अच्छा नसीब हो उसका दुआ करता हूँ, और आगे फिर से मिसिंग पार्ट. सफदर बलोच, आप लिखते हैं इतना है, हमेशा आपका मैसेज मिसिंग आता है, मतलब कुछ आधे अधूरे अल्फाज जो कभी ही पूरे नहीं हो पाते आपके मैसेजेस में. व्हाई?

और साथ साथ हम एक और गाना प्ले करते हैं एंड नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल बाय आतिफ असलम, इसको हम सुनेंगे और इसी के साथ कुछ हम लास्ट लकी कॉलर्स भी लेंगे. स्टे ट्यून.

0: ओके जी, लास्ट लकी कॉलर लाइन पे है हमारे साथ। हेलो,
1: कौन सुनाए?
0: कौन सा सॉन्ग सुनाऊं?
1: शमर अली के मीरा अली।
0: ओके जी, कॉल भी ड्रॉप कर दी। अच्छा, लास्ट लकी कॉलर, मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताए कैसे?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ सरदर्द। आज की अच्छी बात क्या है?
2: आज की अच्छी बात सदर ना करने वाले लोगों को देना नुकसान नहीं बल्कि निजात।
0: अरे वाह, क्या बात है जी, क्या खूबसूरत बात है। और कुछ कहना है सरदर्द? थैंक यू सो मच। और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत, और लास्ट में हम प्ले करेंगे गाना अहमद जहांजीब का। और इसी के साथ फाइनली इंशाल्लाह मेरी आपसे चिट चैट होगी मंडे को ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे। सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सो दिस इज मी आरजे गुलजार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह।

0: सखर जी फिजाइन में समायल मोहब्बत जो एहसास,
1: CFM 88
0: सखर जो आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

सिकंदर अब्बास ऐं कश्म खे निशानो बणायो वियो। कश्म में अमेरिकी हमले जे नतीजे में 3 शहरी शहीद, 2 ज़ख़्मी। ईरान जे बे अमेरिका ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते मिज़ाइल हमला। अमेरिकी फ़ौज मौजूद विच ओभर में अमेरिकी फ़ौजनि ते हमले जे जवाब में ईरान ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई। ईरान जे बे अमेरिका ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते हमिलो। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल हमला नाकाम बणाइण जी दावा। सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर जे अमेरिकी सदर सां हंगामी मुलाक़ात। सऊदी वली अहद जो पैगाम बि पहुचायो। अमेरिकी मीडिया जो चवणु आहे त सऊदी जे दिफ़ा वारे वज़ीर शहज़ादा ख़ालिद बिन सलमान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां मुलाक़ात कई। सऊदी वज़ीर जे नायब अमेरिकी सदर सां बि मुलाक़ात। ईरान सां छिकताण घटाइण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर। ईरानी क़ौम नाइंसाफ़ी ऐं ज़ुल्म ख़िलाफ़ कॾहिं बि कंध न झुकाईंदी। असां दुश्मन ख़िलाफ़ मज़ाहमत जो नओं मिसाल क़ाइमु कयो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ईरानी क़ौम पंहिंजनि शहरनि ते ज़ुल्म नथी करे सघे। ईरानी क़ौम दुश्मन ख़िलाफ़ मुतहद ऐं साबित क़दम रहंदी।

रोके ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो करे छॾियो। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त आबनहरमुज़ जी बहालीअ ते ॻाल्हियूं जारी आहिनि। वज़ीर आज़म सऊदी अरब सां बि ॻाल्हायो आहे, धुरियूं हमला बंदि करे सहप ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि, तकरार ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कयो वञे। सदर आसिफ ज़रदारी सां वफ़ाक़ी गरु वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मुलाक़ात। बलूचिस्तान ऐं के पी के समेत मुल्क जे अमन अमान जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन बाबति सदर खे आगाह कयो। सदर दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फोर्सिस जी सलाहियतुनि जी वाखाण कई। मुलाक़ात दौरान सूबाई वज़ीर अली हसन ज़रदारी बि मौजूदु हो।

0: पंजाब जे शहर लाहौर में घर जी छित किरी पई। 10 जणा दबजी फोत थी विया, 3 जणा जख्मी। लाहौर जे बागानपुरा में घर जी छित किरण वारो वाकियो पेश आयो। रेस्क्यू अमलदारन मूजिब घर जे मलबे हेठां 10 जणन जा लाश ऐं 3 जख्मीन खे कढियो वियो आहे। फोतिन जा मड़ ऐं जख्मीन खे अस्पताल मुंतकिल। पाक बेरिया जे जहाज PNS तैमूर जो अरबी समुंड में कामयाब। रेस्क्यू ऑपरेशन 19 मुहाणनि खे रेस्क्यू कयो वियो। मुहाणनि जी ॿेड़ी गवादर खां 20 नाटकेल मेल जे फासले ते फासी पई हुई। ॿेड़ी में 11 पाकिस्तानी ऐं 8 ईरानियुनि समेत 19 मुहाणा सवार हुआ। मेहर सिविल अस्पताल जो सिक्योरिटी गार्ड हथियारबंद नथा कतल। गोठ शहर जो दड़ो वासी रुस्तम उर्फ़ सागर खोसो ड्यूटीअ तां वापसि घर वञी रहियो हो त खेसि कतल कयो वियो। ठारू शाह भरिसां पाणीअ जे वारे तां पीरसन खे सिरोटा हणी कतल कयो वियो। गोठ पीर पांधीअ में पाणीअ जे वारे तां पोरेत मोहरम राजभर खे सिरोटा हणी कतल कयो वियो। प्रिया कुमारी जे अगवा ऐं सिंधूअ मां जलालपुर कैनाल कढण खिलाफ़ जसकम पारां मुज़ाहिरा कया विया। सकरण में मीडिया सेंटर चौक ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। ड्रिप मेयर शाह में जसकम कारकुननि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। अॻवाणनि जो चवण आहे त जलालपुर कैनाल खे कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। सिंध में गैर कानूनी तौर तरसियल धारियुनि जी निकाली लाइ STP जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। कंबर में STP पारां 2 किलोमीटर प्यादल मार्च। दादूअ में बि सिंध तरक़ी पसंद पार्टी पारां धारियुनि जी आबादकारी ख़िलाफ़ एहतजाज। गैर कानूनी तौर तरसियल अफ़गाननि समेत समूरनि परॾेहनि खे निकाली ॾियण जो मुतालबो। शादात कोर्ट में सैफुला मंगसी ब्रांच में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ हारियुनि ऐं आबादकारनि जो एहतजाज। नूरपुर ऐं अहमदाद शाख में पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ आबादकारनि प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। संदन चवण आहे त सिंधु दरिया में बोड वारी सूरत आल आहे, पर शादात कोट जे आबादकारनि जा फसल सड़ी रहिया आहिनि, पाणी फराहम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एटमाट, ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-335-69
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
7: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: ओके जनाब, क्या बात है। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद आप जानना चाहते हैं। अक्सर ओका देखा जाता है कि आप लोग जो है अपनी स्किन को लेकर, अपनी खूबसूरती को लेकर जरा सा परेशान हो जाते हैं, तो आप लोगों की ये परेशानी को दूर किया जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ती रहती बल्कि आप लोगों को ऐसा हुसन मिलता है, ऐसी शानदार सी ब्यूटीफुल स्किन मिलती है कि आप देखकर कहते हैं कि वाह जी वाह, ये तो कमाल ही हो गया। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। बिल्कुल जी बताया जाएगा, लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी बताएं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं, आप हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किस तरह से होने वाले हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाले वो ये कि आज आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में जो आप लोगों से मैं टॉपिक पूछना चाहूंगी वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आजकल के दौर में जितने आप लोग ड्रामे देखते हैं, मूवीज देखते हैं या फिर सीरीज देख रहे होते हैं, तो आजकल के दौर में एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसका कोई फेवरेट नहीं होगा, जिसकी कोई फेवरेट पर्सनालिटी ना होगी, फेवरेट कोई भी सेलिब्रिटी ना होगी। तो आज मैं आप लोगों से सवाल ये पूछना चाहूंगी, जैसे हम ये जो चकाचौंध वाली जिंदगी देख रहे होते हैं आजकल सेलिब्रिटीज की, तो हमें ये एक एहसास होता है कि भाई काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती या फिर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि हम इनकी लाइफ जिये या हमें मौका मिले इनकी जिंदगी जीने का। तो आज मैं आप लोगों से जो सवाल पूछना चाहूंगी वो बिल्कुल इस तरह होने वाला है कि आप बताएंगे अगर आप लोगों को मौका मिले एक दिन के लिए किसी सेलिब्रिटी से अपनी जिंदगी को जरा एक्सचेंज करने का, यानी कि आप उसकी जिंदगी जिए और वो आपकी जिंदगी जिए, तो आप किस सेलिब्रिटी का इंतखाब करेंगे, कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी जिसकी जिंदगी से आप जरा मुतासर हैं वो आप मुझे बताएंगे। अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घुने वाले लिसनर्स हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आइए और पेज को फॉलो कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप जैसे ही हमारे पोस्ट पर आ जाते हैं तो आपको हमारे जो है ना व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिलेगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, ये तीनों काम है जो कि आप लोगों ने करने हैं, तो जल्दी से कीजिए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं और उसके साथ साथ आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे ये तमाम प्रोडक्ट जो कि आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताए जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम कैसे बनते जाइए और मुझे बताइए अगर आपको चांस मिल रहा हो, मिल रहा हो किसी एक सेलिब्रिटी से अपनी जिंदगी को जरा स्विच करने का, यानी कि वो आपकी लाइफ गुजारे और आप उसकी लाइफ गुजारे, तो आप किस सेलिब्रिटी का इंतखाब करने वाले हैं। ओके जी, तो आपके मैसेजेस जो कि आना स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाते जाइए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। नजीर कोसो भाई हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, भाईजान आपको वेलकम कहा जाता है और लिखते हैं कि जिंदगी में मुश्किल हमेशा आएंगी लेकिन मुस्बत सोच हमें हिम्मत और उम्मीद देती है, छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें और हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम आदिल, क्या ये बात ठीक है कि आते साथ इतनी लंबी चौड़ी सी पोइट्री आप भेज देते शो के अंदर, एक छोटी मुनासिब सी शायरी भेज दिया करें वो ज्यादा अच्छी रहती है। और मुमताज अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं सोचम तो वहाँ जो हाल अवाल पूछा अमान जो शो तमाम सुठो आए, तमाम जो आवाज भी सुनो आए, थैंक यू वेरी मच जी, तमाम जो मोहब्बत एंड प्रोग्राम के पसंद कयो पया। अखलाक बलूच भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहा जाता है। आदिल कहते हैं सदरा ये सॉन्ग लगाएगा बिल्कुल यू गानो तमाम के बुधराइंदास जी। और वहीद वफाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी, क्या हाल चाल है आपके, माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम फ्राम जेकब आबाद से आपके साथ साथ खुश आमदीद एंड वेलकम। मूसा कोरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, हिदायतुल्लाह अहमदानी कहते सलाम, कैसी हो, मैं भी अच गया इतने सी में रजाई तो दो भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अच्छा हैप्पी गर्ल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहती माय फेवरेट आरजे मुस्कान, क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी है, वेलकम टू शो स्वीटी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। चाचा खालिद कहती है अस्सलाम वालेकुम, हम भी नाश्ते के बगैर नमाज पढ़ के शो में व्हाइट एश एंड लवली डी स्किन ब्यूटी क्रीम का शो सुन रहे हैं। चलिए जी, इससे तो आप मुझे कंफ्यूज कर देते हैं, प्रोग्राम का नाम है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, सो आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए, व्हाइट एश की लवली लगाइए या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और नाश्ता करके जनाब भी लगाइएगा क्योंकि नाश्ता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोहम्मद ताहिर लुंड हमारे साथ मौजूद है, भाईजान आप हमें खैर पर मीरे से सुन रहे हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। आबिद परियास्ती हमारे साथ है और आपको भी हेलो कहा जाता है। किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा हाजिर, स्मार्ट हाजिर आए, स्मार्ट भात आज मोहबितू आए हाजिर आयो। और उनका अलावा हिदायतुल्लाह कहते हैं चलें जी बिल्कुल, गाना लिखाए लगाएंगे आपका गाना भी, और पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मोहम्मद समान के लिए गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू यू माय स्वीट बुआ जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। नसरुल्ला सुमरो आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम, तू खुशां माँ खुशां तू बुदाया खुशां तू। संजय जयपाल हमारे साथ हैं, हाय। अजुन के अलावा एसन अरबाणी, वालेकुम अस्सलाम इन मुलाल इस्लाम अदर, यदि ओ माय फेवरेट आरजे मेडम मुस्कान लाड़काना की पहचान कैसी आप और आपकी तबियत कैसी है, माँ भी सफा भली तबियत भी सफा भली था पांजो हाल वालियो की आयो मजे में आई पोस्ट के लाइक एंड शेयर कयो उन का अलावा बुधायो तो तमा केड़ो केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया या फिर अन्या सोच विचार में आयो तो बाबा असा के ही प्रोडक्ट लगाएं घुर्जे असा जे एरिया में कोन तो मिले, ये सब चीजों आए जेके तमा जो क्लियर कंदासी आई तमा के बुधाइंदासी केड़ा प्रोडक्ट आए जेके तमा के इस्तेमाल करण घुर्जे छो तो बाबा ही कमाल आहे YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो जेके तमा इस्तेमाल कंदा आई सफा घणा सोणा थी वेंदा। हिते जनाब टाइम अची वयो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, तो बिल्कुल जी तमाई ते बैठा हो जो मां ओ ही मनी ओ ही मोटा थी, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग YTH एंड स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: GA FM 88
2: सिंध की आवाज।
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द,
5: अपना शहर अपना
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड में रापर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिल्कुल जी, हमारे साथ यहाँ पर माजूर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप लोगों के साथ साथ मौजूद यहाँ पर जितनी भी प्यारी प्यार लोग हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को ये बताया जाता है कि अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप लोग पहले जान लें इन तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में कि मैं जो आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा लें या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा लें तो आप लोगों की खूबसूरती जो है वो किस तरह से मेंटेन रहती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर आपको खूबसूरती मिल भी जाती है तो उसका ख्याल रखना, उसे मेंटेन रखना, ये भी थोड़ा एक डिफिकल्ट सा काम बन जाता है। लेकिन अगर आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा खराब है, आप लोगों के चेहरे पर काफी ज्यादा मसाइल आ रखे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई जान इनका खात्मा तो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप भी इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताती चलूं कि आप लोगों के स्किन के मुताबिक तैयार किए गए और आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे कि भाई आप लोगों के लिए नाइट क्रीम भी है, फेयरनेस क्रीम भी है और एक्नी ट्यूब भी है, सोप भी है, फेस वॉश भी है, लोशन भी है और हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं। बिल्कुल ये तमाम प्रोडक्ट्स आप लोगों के हिसाब से ही तैयार किए गए हैं। अगर आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे बेहतरीन बात कि व्हाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं, तो नेचुरल अज़ा से जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं तो उनका इस्तेमाल कुछ और ही वखरा हो जाता है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आप लोगों को बताएंगे कि आप व्हाइट एज के तमाम प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर सकते हैं। बस आप लोगों को इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो वो आप लोगों के स्किन के मुताबिक होना चाहिए। यानी कि अगर आपके चेहरे पर एक्नी का मसला है तो आपको डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमें कोई फेयरनेस क्रीम चाहिए जो कि हम लगाएं तो हमारी स्किन जो है वो भाई ग्लो भी आता रहे और हमारी स्किन की हिफाजत भी होती रहे, तो आपके लिए व्हाइट एज लवली क्रीम है। अगर आप कोई अच्छी सी नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और उसके अलावा अगर आप किसी अच्छा सा सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अच्छे से सोप की तलाश में है, तो व्हाइट एज का ब्यूटी सोप आपके लिए मौजूद है और साथ ही साथ व्हाइट एज का आपको फेस वॉश भी मिल रहा है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं ना मिलने की सूरत में। बिल्कुल जी, आप लोगों को नंबर्स भी बताए जाते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं। आप लोग बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएं, वहां से मालूमात लें, मिल रहे हैं तो बढ़िया, नहीं मिल रहे तो फिर आपने परचेज करने के लिए नंबर्स के ऊपर राबता करना है। और नंबर के ऊपर राबता करते साथ ही ये फायदा हो जाएगा कि आप लोगों के करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज के तमाम प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो नंबर से जरा नोट कीजिएगा, ओके जी, पहला नंबर है 0332738439, दूसरा नंबर है 0312502597। बिल्कुल जनाब, जल्दी से ये नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए और अपनी जरा करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज के तमाम प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराते जाइए। और इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बताती चलूं कि अगर आप बिल्कुल जी, अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों की खूबसूरती तो बढ़ेगी। और एक मजे की बात आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है इसको नेचुरल अज़ा से तैयार किया गया है। जैसे कि इसके अंदर आपको एवोकाडो मिलेगा, एलोवेरा मिलेगी और मिल्क मिलेगा। ये तमाम चीजें जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप जब इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तो आप लोगों की स्किन फ्रेश हो जाती है, आपके चेहरे की स्किन जो है वो जनाब निखरना स्टार्ट हो जाती है। साथ साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। क्या आपकी जल्द को नरम, मुलायम और ताजा बनाने में मदद देती है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की खुश्की, दाग धब्बे, बेरोन की ये सारी चीजें कम होना स्टार्ट हो जाती है, जबकि आपकी जल्द ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब खास अज्जा आपकी जल्द की हिफाजत करने के लिए और कुदरती खूबसूरती को उजागर करने के लिए। तो रोजाना अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम को तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाएगी
اور گلوئنگ ہو جائے گی اور آپ احساس آپ کو ہو جائے گا کہ واقعی آپ اچھا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں. اور وائٹ ایش بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو وائٹ ایش کا بیوٹی سوپ بھی مل رہا ہے اینڈ فیس واش بھی مل رہا ہے. تو سوپ جو ہے وہ بھائی وائٹ ایش بیوٹی کریم کی طرح ہی ہے, یعنی کہ اس کو بالکل سیم ٹو سیم ڈٹو کاپی بنایا گیا ہے. لیکن اگر ہم وائٹ ایش کے فیس واش کی بات کرتے ہیں تو وہ وائٹامن سی سے تیار کیا گیا ہے. اور وائٹ ایش کا وائٹامن سی والا فیس واش آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا, کیونکہ بہت سے لوگوں کی اسکن کے اوپر وائٹامن سی کی کمی ہوتی ہے. تو وائٹامن سی کی کمی ہو یا وائٹامن ای کی کمی ہو, یہ دونوں جو وائٹامنس کی کمی ہے نا, یہ وائٹ ایش کا فیس واش پورے کر دے گا. اور یہ اتنا کریمی فیس واش ہے کہ آپ لگائیں گے تو کہیں گے آئے ہائے مزے ہی آ گئے. تو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے چہرے پر نکھار لانا چاہتے ہیں, گلوئنگ اسکن حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے جناب وائٹ ایش کی لولی کریم بھی موجود ہے. اور وائٹ ایش کی لولی کریم کی اگر ہم جانب آ جاتے ہیں تو یہ ایک وائٹامنس کا بھرپور فارمولا ہے. اس کے اندر 30 وائٹامنس کے کیپسولز ایڈ کیے گئے ہیں. یہ ایک فیئرنس فارمولا ہے جسے آپ کے گھر کے سارے لوگ لگا سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کے گھر میں بچے ہو, بوڑھے ہو, جوان ہو, مرد حضرات, خواتین, ہر کوئی وائٹ ایش لولی کریم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو بالکل جی, جس چیز کا فائدہ اٹھانا بنتا ہے اس کا فائدہ اٹھائیے اور وائٹ ایش لولی کریم آپ استعمال کریں گے, کیونکہ اس کے اندر نہ صرف وائٹامنس کا فائدہ ہے بلکہ یہ اس کے اندر جو ہے نا, یعنی کہ وائٹ ایش لولی کریم کے اندر آپ کو سنسکرین کا فائدہ بھی ملے گا, یعنی کہ اس کے اندر سنسکرین بھی ایڈ کی گئی ہے. تو لازمی طور پر آپ نے وائٹ ایش لولی کریم کا یوز کرنا ہے. آپ کسی آفس جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, بس آپ اٹھتے ہیں, اپنا فیس واش کرتے ہیں اور وائٹ ایش لولی کریم کا استعمال کرتے ہیں اور آپ چٹکیوں میں ریڈی ہو جاتے ہیں. اتنا پرفیکٹ والا پروڈکٹ آپ کے پاس موجود ہے, تو آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا. آپ کی خوبصورتی تو بڑھے گی لیکن آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹ آپ کی خوبصورتی کی ضمانت ہے. ٹرائی کیجیے اور حسین سا لک حاصل کیجیے. اچھا نہیں مل رہے تو جو آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں آپ بھی, تو جو نمبر آپ کو بتا رہی ہوں ان کے اوپر آپ رابطہ کرتے رہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے قریبی جنرل سٹورز کے اوپر جب اویلیبل کرا لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بس آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر چلے جائیں گے اور وہاں سے آپ آرام سے وائٹ ایش کے تمام پروڈکٹس پرچیز کر سکتے ہیں. اوکے جی, تو میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پروگرام میں یہ پوچھ لیا تھا, آپ مجھے بتائیں اگر آپ لوگوں کو چانس مل رہا ہو کسی ایک ایسی سیلیبریٹی سے اپنی زندگی کو لائف کو سوئچ کرنے کا جسے آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اس کی لائف سے آپ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, تو مجھے بتائیں وہ کون سی سیلیبریٹی ہوگی جسے آپ اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہیں گے. وہ آپ کی لائف میں آ جائے گی اور آپ اس کی لائف میں چلے جاؤ گے. بتائیں مجھے جلدی, میں جانا چاہتی ہوں.

पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए. नवाबा टॉपिक ही फॉलो करना पड़ता है. ये कौन सनी दिमाग है. मोहम्मद ताहिल उंड भाई कहते हैं गुड टॉपिक. मेरा फेवरेट है जी दानिश तैमूर. ओके दानिश तैमूर से अपनी जिंदगी जरा तब्दील करना चाहेंगे. क्या बात है. और हमारे साथ संजीव जयपाल भाई. हेलो मूसा कोरी कहती अदी असा तांची जिंदगी तब्दील कयो. नक्यो बाबा नक्यो. सईदा बुखारी हमारे साथ ही. वालेकुम अस्सलाम. वैसे मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ और आप जल्दी से बताइए मुझे छोड़ के. और सईदा बुखारी कहती है अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा जनाब क्या हाल है आपके. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे. आमीन सुमा आमीन. और कहती है आप अच्छा बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. जब इतने प्यारे लोग इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं तो भाई सच्ची बताऊं बहुत खुशी होती है. तो थैंक यू सो मच सईदा बुखारी. और सईदा बुखारी लिखते हैं कि तन्हा इंसान की तन्हाई में खलल डालकर उसे दोबारा तन्हा कर देना है. ये चीज थोड़ी समझ नहीं आई. नसरुल्लाह भाई कहते हैं नालो सफा नंडो आ शो जो न बाबा नंडड़ो नाए. थोड़ो वडड़ो आ पर सोलो भी आए तव्हां खे याद थी वेंदो अगर ॿ टे ॾींहं तव्हां रेगुलर प्रोग्राम में अचण स्टार्ट कयो त. ओके जी चाचा खालिद कहते हैं मैं अपनी जिंदगी जीना चाह रहा हूँ जीने देना. सेलिब्रिटीज की जिंदगी बहुत अजीब और गरीब होती है. योर टॉपिक आंसर. सही है भाई सही है. ये भी अच्छी बात है. मोहम्मद नीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं. जेकब आवाज से भाई जान आपको वेलकम कहा जाता है. ऐसे कहते हैं जो बड़ी लाइव स्ट्रीमिंग में मसलो आ शायद सखर ते शो कनेक्ट ना है. सखर आ रहा शो सही नाला.

नहीं भाई चल तो रहा है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए क्योंकि ये आप लोग डिजर्व करते हैं। अक्सर उगा देखा जाए तो आप लोगों की खूबसूरती जो होती है ना वो बहुत ज्यादा मायने रख रही होती है। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं आप लोगों का अच्छा दिखना बहुत मायने रखता है, तो अपनी स्किन का ख्याल कीजिए और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम हो, व्हाइटिश लवली क्रीम हो, व्हाइटिश ब्यूटी सोप हो या फिर व्हाइटिश फेस वॉश ही क्यों ना हो। और जी नहीं मिल रहे तो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए। रिजवान अली हमें सुन रहे हैं, हेलो के दे गुड शो, थैंक यू। ऐसा कहते हैं टॉपिक असा के पांची जिंदगी भली या बा मानू सिर्फ दिखाओ कंदा आए ने पर हकीकत कुछ भी होती है। बिल्कुल ता सही था। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं जिसकी लाइफ परफेक्ट हो, मैं एक ऐसी लाइफ जीना पसंद करूंगा जो सुबह उठे तो उसके दिमाग पर कोई जोर या परेशानी ना हो, सेहत बिल्कुल फिट हो, लोगों की लाइफ से कोई लेना देना ना हो, बाकी बहुत बातें हैं लेकिन छोड़े छोड़ना ही तो नहीं चाहते।

वरी अॻिते चौथा वेसे ॾिठो वञे त मुंहिंजी लाइफ काफ़ी बहितर आहे. छो नांगनि जे ॿेड़ में हथ विझा यानी सभु तपिया वेठा आहिनि ईअं न तव्हांजे कह सघते हैं. ओके जी, अब्दुल रज़ाक बलोच भाई हमारे सारे दादू से आप हमारा शो सुन रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं. मुमताज़ कहती अदी अॼु असां लाइ बि सॉन्ग लाइ जो मास्टर मंज़ूर जो, बिल्कुलु मास्टर मंज़ूर तव्हांखे ॿुधाईंदासीं प्यारा भाउ, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया.

की पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और स्मार्ट भाई कहते हैं कि मुखे सब चवन था तो में वाइटामिन जी कमी आ केड़ो वाइटामिन बुधायो ताके बुधायो ता जो वाइटामिन जी कमी किया पूरी थी। वैसे व्हाइटिश लवली क्रीम जेका ना इन जी अंदर टीह वाइटामिन्स जा कैप्सूल पहल अथव सो तव्हां जी जेका भी कमी आ वाइटामिन जी पूरी थी वेंदी बस तव्हां व्हाइटिश लवली क्रीम जो इस्तेमाल कंदा त पोए। अच्छा ये हमारे साथ है रुखसार मरी। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा अभी क्या हाल है आपके? शो सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा चल रहा है और सॉन्ग प्ले करें मैं कोशिश करती हूँ और आप हमें सुन रही हैं मीरपुर खास से खुश आमदीद। हिदायतुल्लाह कहते हैं माशूक सर की लाइफ एक्सचेंज करता टॉपिक आंसर क्या बात है क्या बात है। ओके जी मह इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद कहते हैं मक्का पाक से सलाम एम आर जी। वालेकुम अस्सलाम सर और दुआ में याद रखिएगा सर कब वापस आ रहे हैं सर। लोग और हम सब आपको मिस कर रहे हैं प्रोग्राम में।

बिल्कुल जी, नंबर मैं आपको बता रही हूँ, बस आपने डायल करना है, ठीक है? सो बिल्कुल आपने नंबर डायल करना है 0332738439, या ये नंबर बंद हो तो दूसरा नंबर ट्राई कर सकते हैं 0312502597, ये नंबर भी डायल कर सकते हैं। ओके जी, नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी तमाम वाइटेज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। अवेलेबल होंगे तभी तो आसानी होगी ना आपको परचेज करने में, और आप जाएंगे बस परचेज करके आएंगे। तो जल्दी जल्दी से वाइटेज के तमाम प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए। और उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई डॉक्टर पिंपल ट्यूब के बारे में आज आपने नहीं बताया, तो मैं बस वही सोच रही थी कि आप लोगों को डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब के बारे में बताएं। अगर आप लोगों के चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा आ चुके हैं भाई, एक्नी तो डाढ़ा मतलब एड़ी कड़ी प्रॉब्लम आए ना, जेका मतलब असाई दिल चुनी है, या अगर प्रॉब्लम असाई लाइफ में अची वया तो इनका छुटकारो हासिल करण तमाम घणो मुश्किल थी वेंदो आहे। ऐं तव्हां अगर इन प्रॉब्लम में फासी वया आहियो त तव्हां खे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे घणी हेल्प कंदो। सफ़ा ज़बरदस्त क्वालिटी जो आहे, ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे मेडिकेटेड फार्मूले सां तयार थियल आहे। बिल्कुल जी, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको जड़ियुनि बूटियुनि सां एड हिन जे अंदर ना जड़ी बूटियूं एड थियल आहिनि, ऐं डॉक्टर जी निगरानी जे अंदर तयार थियल आहे मेडिकेटेड फार्मूले सां, ऐं तव्हांजी एक्नी ट्रीटमेंट कंदो। तव्हांजा न सिर्फ़ चेहरे जा एक्नी ख़तम कंदो बल्कि एक्नी जा निशान हुजनि, ब्लैक पोर्ट्स आहिनि, वाइट हेड्स आहिनि, ब्लैक हेड्स आहिनि, एक्नी कहिड़ी बि साइज़ जो आहे, एक्स्ट्रा ऑयल आहे, या फिर कोई चोट जो निशान आहे, को सड़न जो निशान आहे, को धक जो निशान आहे, इहे सभु चीज़ूं ख़तम थींदियूं, तव्हांजी स्किन थी वेंदी क्लियर, बेदाग ऐं सफ़ा गोरी गोरी। सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब के हणण जा तरीक़ेकार इहे आहिनि त तव्हां हिन खे सुबुह जो बि लॻाईंदा ऐं राति जो बि लॻाईंदा, ॿ टाइम तव्हां लॻाए सघो था। ऐं लॻाइण खां पहिरियां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो, ठीकु आहे? क्लीन फेस हुजणु लाज़मी आहे, ऐं तव्हांजा हथ बि क्लीन हुजणु लाज़मी आहे। सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अगरि तव्हांजे चेहरे ते सफ़ा घणा दाणा आहिनि, यानी कि खोड़ सारा दाणा आहिनि, स्किन ते घणा दाणा हूंदा आहिनि, उहो टे दफ़ा लॻाए सघे थो। बाक़ी नॉर्मल स्किन ते दाणा आहिनि, नॉर्मल कोई निशान तव्हां रिमूव करणु चाहियो था, बट टाइम जेको आहे उहो लॻाए सघो था। सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब डॉक्टर पिंपल ट्यूब आहे, उन खां अलावा वाइट एश लवली क्रीम बि आहे। डॉक्टर पिंपल ट्यूब लॻाए चेहरे जा एक्नी ऐं निशान ख़तम करे पोइ तव्हां वाइट एश लवली क्रीम लॻायो, आए हाए मज़ो अची वेंदव। अच्छा चलो मोहिड़ा, मतलब छो तव्हांखे एक्नी वणंदा आहिनि, एक्नी कंहिंखे वणंदा आहिनि, मूंखे ॻाल्हि सम्झ में इहा घटि ईंदी आहे नसरा, बाबा इन्हनि एक्नी खे ख़तम कयो न आहिनि हूंदा एक्नी भला, अगरि एक्नी जो तव्हां ख़ात्मो न कंदा न त अॻिते हली तव्हांखे ॾाढो नुक़सानु ॾींदव, ऐं जा जेके निशान तव्हांजे चेहरे ते अची वेंदा न उहे सफ़ा कॾहिं बि न वेंदा। सो तव्हां डॉक्टर पिंपल इस्तेमाल कयो, पंहिंजे चेहरे जे एक्नी जो ख़ात्मो कयो, ऐं पंहिंजी स्किन खे सफ़ा क्लियर बणायो, गोरो बणायो ऐं चिटो बणायो। सो बिल्कुल ई वाइट एज जा तमामु प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हांखे ईज़ीली हर जॻह तां मिली वेंदा। सो वञो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते, परचेज करियो, इस्तेमाल करो, ऐं न मिलंदा त हिन नंबर ते राबितो कयो जेको तव्हांखे ॿुधायो वञे थो। बिल्कुल सुञा, प्रोग्राम में हाणे टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदो। वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं, काॾे न वेंदासीं तव्हांखे छॾे बाबा, तव्हां हिते वेठा हुजो, मां उहो वञी उहो मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: रखनी।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
0: उर्दन में अमेरिकी अडे ते हमलो, उर्दन पारा ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाने जी दावा। सऊदी अरब के दिफा वारे वजीर जो अमेरिकी सदर ए नायब सदर से मुलाकातों। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो खास पैगाम भी पहुंचाया। विच ओभर में जारी चिकताण गालिन जरिए हल करण ते जोर भरियो। सऊदी दिफा वारे वजीर चयो आहे ते इराक मा वेड़ा ग्रुपन सऊदी ते हमलो करे हद पार कई, जैं सबब दिफा में इराक अंदर कार्रवाइयों कयूं। इराक में कयल कार्रवाई जो मकसद जंग या चिकताण में वाद न है। सऊदी चिकताण में वाद बाद गालिन जरिए चिकताण जो खात्मो चाहे थो। ईरानी कौम नाइंसाफी ए जुल्म खिलाफ कदें भी कंध न झुकाईंदी। असा दुश्मन खिलाफ मज़हमत जो नओ मिसाल कायम कयो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़िशान चयो आहे त ईरानी कौम पंहिंजे शहरनि ते ज़ुल्म नथी करे सघे। ईरानी कौम दुश्मन खिलाफ़ मुतहद ऐं साबित कदम रहंदी।

पाकिस्तान अमेरिका ईरान का हमला रोके गालियूं शुरू करने जो मुतालबो करे छो पर रही तर्जमान अबन हरमुज की बहाली से गालियूं जारी आन वजीर आजम सऊदी अरब से भी गाल है धुरियों हमला बंद कर सहप ए सबर जो मुजाहरों कन तकरार गाल जरिए हल किया वे सदर आसिफ जरदारी से वफाकी गरु वजीर मोहसिन नकवी की कराची में मुलाकात बलूचिस्तान केपीके समेत मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल से गाल मोहसिन नकवी दहशतगर्दन खिलाफ जारी ऑपरेशन बाबत सदर के आगाह किया सदर पारा दहशतगर्दन खिलाफ फोर्सिस की सलाहियत की वाखाण मुलाकात दौरान सूबाई वजीर अली हसन जरदारी भी मौजूद हुआ।

0: वरी वजीर जी सदारत है डिजिटल सिंध बाबत इजलास एन टी सी एम डी मेजर जनरल रिटायर्ड अली फरहान जी भी शिरकत मुराद अली शाह पारां जदीद तरीन टे सूबाई डेटा सेंटर ठाण जो हुकुम अमलदारन के डेटा सेंटर्स बाबत जामा मनसूबो जोड़न जी हिदायत मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध डिजिटल गवर्नेंस ए टेक्नोलॉजी ते बधल अवामी इंतजामिया जे नए दौर में दाखिल थी रहियो आहे जदीद सूबाई डेटा सेंटर सिंध जे डिजिटल तब्दीलीअ जो बुनियाद बणंदा।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बे डरंदी
6: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मुअस्सर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

स्किन के ऊपर प्रोडक्ट्स लगाना चाहिए। ये हर एक, जैसे आपकी बॉडी को फूड की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, वैसे आपकी स्किन को प्रोडक्ट की जरूरत होती है। चाहे आप कितना ही मतलब ऐसे ख्याल रख लो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोगों को प्रोडक्ट लगाने पड़ ही जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट के पीछे पड़ चुके हो, या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट लगाएं जो कि आप लोगों की स्किन को मजीद खराब कर दे, या फिर आपके चेहरे की स्किन को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए, तो उससे बेहतर नहीं है, उससे बेटर नहीं कि आप लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताए जाएं जो कि आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखे और आप लोगों के चेहरे को चमकाएं और आप लोगों के चेहरे पर जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव से रिस्पॉन्स दे। तो अगर आप भी यहाँ पर ये जानना चाहते हैं, आप भी अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं, तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश, ये दोनों प्रोडक्ट्स आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और ज्यादातर देखा जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में थोड़ा सा डिस्क्लेमर आप लोगों को बताओ, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये उन लोगों के लिए तैयार की गई है जिनके चेहरे की स्किन सेंसिटिव होती है। और सेंसिटिव स्किन होने की वजह से ज्यादातर ऐसा हो जाता है कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, या तो ऐसा हो जाता है कि आप लोग ये समझते हैं कि भाई अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो हमारी स्किन को खराब करेगा ही करेगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है इसे इस तरह तैयार किया गया है कि आप हर स्किन के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सेंसिटिव स्किन ही क्यों ना हो। उसके साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, ऐसे डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर बनाया गया है, फुल डॉक्टर्स ने ही ऐसा समझ लें इसे तैयार किया गया, तो इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको मिल रहा है जनाब माइक्रोबीड्स फॉर्मुलेशन, विटामिन ई बीड्स, अल्फा आर्बुटीन, गोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करती हैं, आपकी स्किन का ख्याल रखती हैं, आपकी स्किन को निखारती हैं और आप लोगों की स्किन की हिफाजत भी करती हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम पाकिस्तान में और बाहर की ममालकात में भी मिल रही है। इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना इसे विटामिन ई बीड्स जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं ना, तो पाकिस्तान में कुछ गिनी चुनी दो चार प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिनके अंदर विटामिन ई बीड्स है, तो उनमें डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है। ये इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है ना कि सच बताऊं तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो बाबा दुआ उड़ी दो अल्लाह। तो तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे ॾिसो, सफ़ा प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहिनि। इन खां अलावा तव्हांजी स्किन जी सफ़ा हिफ़ाज़त कंदा आहिनि, तव्हां ख़ुशि थी वेंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो त तव्हांखे गॾु डी स्किन जो फेस वॉश भी परचेज़ करणो आहे ऐं फेस वॉश भी तव्हां लॻायो। अगरि तव्हां क्रीम लॻायो था त तव्हां उन ई कंपनी जो फेस वॉश भी ट्राए कयो। सो बिल्कुल तव्हांजे लाइ डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल आहे। डी स्किन जे फेस वॉश जे बारे में तव्हांखे ॿुधायो वञे त डी स्किन फेस वॉश जेको आहे उहो हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयार थियल आहे ऐं हाइलोरोनिक एसिड सीरम जेको आहे उहो एतिरो पावरफुल हूंदो आहे, एतिरो मतिलबु स्ट्रांग आहे जेको तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद साबित थींदो। तव्हांजी स्किन जे अंदरि ताईं वेंदो, तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट रखंदो, तव्हांजी स्किन खे क्लीन बणाईंदो ऐं तव्हांजी स्किन खे मॉइस्चराइज बि रखंदो। सो इहे सभु अगरि चीज़ूं तव्हां हासिल करणु चाहियो था त तव्हां डी स्किन फेस वॉश खे ट्राए कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमाल कयो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम आहे, सो हुनखे तव्हां राजे टाइम इस्तेमालु करे सघो था ऐं डी स्किन फेस वॉश तव्हां भई जीअं तव्हां फेस वॉश कंदा आहियो कहिड़े बि टाइम ते कयो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे सुबुह मंझंदि शाम तव्हां करे सघो था। सो ही तमामु उहे प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांजी खूबसूरती सफ़ा वधंदी ऐं तव्हांखे अहिड़ा प्रोडक्ट मार्केट में अगरि मिलनि था त तव्हां हुनजो फ़ाइदो वठो ऐं मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल बि करायो। अच्छा, डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न उहो हाणे असां अवेलेबल कराइण स्टार्ट कयो आहे। डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम त तव्हांखे मिली वेंदी पर फेस वॉश तव्हांखे मतां थोरो मुश्किल सां मिले, त तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से कॉल करे अवेलेबल कराए सघो था ऐं कॉल करण लाइ तव्हांखे नंबर आहे 03-12-50-25-907 ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 03-27-38-43-09। ये नंबर डायल कीजिए और आसानी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और इस्तेमाल करते जाइए।

मुरीद आबासी आवाज़ में तमाम सोनो खूबसूरत गानों जो असा फरमाइश ते हलायो आहे बाबा तमाजा मैसेज आए नहीं पैनल ते अगर असा आचूं था तो पैनल ते तमाजा खोड सारा मैसेज जमा थी वया है और ये हमारे साथ अब्दुल्ला महर मौजूद है। अब्दुल्ला महर भाई आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत बेहतरीन है। चाचा खालिद आप हमारे साथ मौजूद है आपको भी वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। गाना आपका लगा देंगे जी और ये हमारे साथ अल्लाह रखियो मेमन फ्रॉम लाड़काना अस्सलाम वालेकुम मौलवी इस्लाम अदर सदरा मुस्कान जी आपका शो और आपकी आवाज ब्यूटीफुल है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे सलामत रखे आमीन। मुरीद अब्बास का कोई भी गाना लगाइएगा डेडिकेट मेरे दोस्तों को और सब सुनने वालों को थैंक यू। ओके जी अल्लाह रखियो मेमन भाई आपको वेलकम कहा जाता है। आप हमारे साथ एक गाना सुनिए अपना। ओके जी मकसूद मला हमारे साथ हैं आप हमारा शो सुन रहे हैं गाना लगाने की कोशिश करेंगे। इरफान ककरान हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम शो तमा के पसंद अची पयो सो थैंक यू। वहीद अली कहते हैं टॉपिक सेलिब्रिटी किसी की जिंदगी इतनी खास नहीं लगती बस अपनी जिंदगी में मजा आए चले ये भी अच्छी बात।

बिल्कुल जी, आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो, यहाँ पर हमारे साथ ही सलाम अलैकुम आप ही। मेरा जवाब ये है कि मैं शाहरुख खान की जिंदगी जीऊंगा और पहली बार शामिल हुआ हूँ, तो आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्टर मंजूर का ये वाला गाना लगाइएगा। अच्छा भाई, मैं समझने की कोशिश करी हूँ आपका गाना, ये अगर मुझे मिल गया तो लगा देते, नहीं तो मास्टर मंजूर का गाना तो हम वैसे भी सुनेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आप पहली मरतबा इतनी जल्दबाजी में कि अपना नाम ही नहीं लिखा, तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। अच्छा महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ है। सिस्टर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, वीआईपी प्रोग्राम, सो नाइस ऑफ यू। सिस्टर फायजा का गाना लगाएगा नया वाला, थैंक्स फरमाइश अली रजा भंड। ओके ओके भाई। और हैं जी रियाज महर, जो सलाम कबूल हो जे। वालेकुम अस्सलाम रियाज महर। मकसूद मना कहते हैं मैं बहुत डरता हूँ। नहीं ऐसी भी बात नहीं है। नाराजगी छुआ, मकसूद कहते हैं जवाब है आमिर खान की लाइफ, ना करें भाई ना करें। और ये मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, आप कैसी हैं? विलेज मोलासन से उदास इमाम बख्श कह रही हो, प्लीज पूरा एसएमएस पढ़ना, मेरी जिंदगी तो बदलेगी नहीं और जो मैं चाहता हूँ वो मिलेगा नहीं और कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अच्छा ठीक है, क्योंकि आपको सब पता है। और कहते हैं आपकी आवाज सुनो वही बस मेरे लिए काफी है। सॉन्ग लगाएगा शमन मिराली का, तूजा वार खुलिया हाणी वाओ, गुले न गुले लगे न लगे अलाइचा। गाना चल गया खुद ही। अच्छा ये नौशीन हमारे साथ कहती है, आई एम योर लिसनर 2 सालों से, पहले बार आपका शो सुन रही हूँ, प्लीज गाना लगाइएगा खींच मेरी फोटो। तो मेरी जान ये गाना जो है वो इंडियन गाना है, तो हम इंडियन गाने नहीं लगा दे, आप कोई पाकिस्तानी गाना बोले लगा देते हैं।

अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करें आप लोग जो फेसबुक पर मौजूद है। अच्छा सजाद अली जमाली नवाब शाह से कहते हैं सॉन्ग प्ले करें ममताज मोलाई पे सो डिठो थई माँ कोशिश क्या थी गानों हलायों था। और ये मौजूद है सिद्रा जी ठितर मोरी से राजा हमीचंद किशोर कुमार हीरा लाल अरबाब और राधूमर कहते हैं फरमाइशा पूरी नहीं करती हैं खाली आसरे देती हैं प्लीज प्ले असां लाइ तू सियाणो थी वियो आ हाणे ॾिसो ममताज मोलाई जूं ॿ फरमाइश जूं ॾिसो हुननि मां हिकिड़ो गानो हलाए वठूं था। सो थैंक यू सो मच प्यारा भाउ तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया बाबा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कजो अगरि तव्हांजे एरिया में नथी मिले त तव्हां अवेलेबल कराए वठो।

मायरा भी असन प्रोग्राम बुधे पई मायरा तवा के चोंथा भली करी आया चाचा खालिद के थे सेलिब्रिटी जी प्रेजेंट लाइफ तो ठीक पर पछाड़ी दाढ़ी खराब होती है चले यो तवा एक्सपीरियंस कयो आहे सो सही सही सही सही अच्छा रुखसार मरी थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं अच्छा हैप्पी कहती आरजे मेरा फेवरेट एक्टर है लाइबा खान पर मैं उसके जैसी उसकी लाइफ नहीं जीना चाहूंगी क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसी रहना पसंद है मुझे चलें जी अच्छी बात है और हमारे साथ ममताज भाई कहते हैं मिल जाती ही अगर एक दिन की बादशाहत मुझे मेरे दौर में तेरे नाम के सिक्के चलते अल्लाह जाई बुदा कसम मूसा कोरी हमारे साथ कहती अदी नालो भलो आ केंजो

जी तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले त पोइ तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण वञो त डी स्किन जो फेस वॉश बि लाज़मी गॾु वठी वठिजो सही आहे हिकिड़ी चीज़ न तव्हां ॿई चीज़ूं वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा त तव्हांखे मज़ो अची वेंदो ॾाढो प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे लॻाईंदा त सफ़ाई अमीरनि वारी फीलिंग ईंदव सो तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो सही आहे अच्छा अनवर भाई हिते टॉपिक अच्छा ये तो आप काफी डीप में चले गए मोहम्मद सुमान की थी टॉपिक जिस पे अल्लाह राजी हो और दुनिया जिसके पांव तले हो ऐसी शख्सियत से मौका मिला तो सेटिंग हो सकती है अच्छा अच्छा किशोर भाई हिते हिते सभु सोचनि था तुंहिंजी लाइफ ॾाढी भली आहे पर ही सिर्फ़ तोखे ख़बर हूंदी हाओ सही आयो नसरुल्ला भाई कहते हे टॉपिक में दिलि पर पत्थर रखकर ये फैसला किया है पोइ ॿुधायां ओके ओके टाइम खोड़ा बाबा असां इंतज़ार करे वेठूं था एसन ठीकु आहे असां तव्हांजी ॻाल्हि सम्झी वियासीं थोरो जज़्बाती न थियो تحمل سے کام لے کوئی شاعر لکھے اچھا رفیق جمالی ہیلو اچھا ایسن چھے تو میڈم ہی گانو ہلایو میڈم میڈم چھے لہا مدے دے چاڑے شدین دو کوئی ساز بجے ये न कयो ये न कयो ये न कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो हुन खां अलावा हिते टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक

0: गानो वैसे भलो तो भला वाइब डाडी सुठी तो ओके सो गानो बदो आई इते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे वापसी जल्दी मोटी तो ता काडी ने जो इते बैठा हो जो ओ ही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पोंसर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए
1: FM 88 Network, सिंध की आवाज। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: दिन डी स्किन फेस वॉश, अ प्रोडक्ट बाय डी एस कॉस्मेटिक्स।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ॾिसो ॾिसो केॾा भला भला गाना ॿुधायांव So, आप सुन रहे हैं White Ace and D-Skin Beauty Show sponsored किया जा रहा है White Ace Beauty Products and D-Skin Beauty Products के तावल से आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताइए जनाब और हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके साथ साथ है बिल्कुल नाम से प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है White Ace Beauty Products हो या फिर D-Skin Beauty Products हो इन तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप लोगों का माइंड सेट हो आप लोगों का जहन जो है वो क्लियर हो कि आप अपने लिए कौन सा प्रोडक्ट परचेज करेंगे कौन सा प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों की स्किन के ऊपर सूट करेगा तो जिन लोगों के चेहरे की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है सेंसिटिव स्किन वाले लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे D-Skin Beauty क्रीम को और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसिटिव लोग ही लगा पाएंगे भाई इसे सारे लोग ही लगाएंगे यानी कि स्किन किसी भी टोन की हो आप D-Skin Beauty क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और D-Skin Beauty क्रीम एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम लगाइएगा उसके अलावा आपको मिल जाएगा जी D-Skin का फेस वॉश भी तो साथ में दोनों चीजें इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों को निखार मिले वो भी बहुत अच्छा बहुत शानदार क्वालिटी का ओके जी सो D-Skin Beauty प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है और प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है तो लाजमी ट्राई कीजिए आपको मजे आ जाएंगे

ओकी जी डिंका वरी जिद्दी वाह वाह ॾाढो भलो गानो हुयो ॿुधोसीं हुन खां अलावा ही हिकिड़ो गानो आहे असांजी लिस्ट में सो हिन खे ॿुधंदासीं वात पटिजी विया वरी अलाए छा छा सो अचो ॿुधूं था ओके जी किशोर भाई लिखते हैं कि हमने कब कहा वो शख्स हमारा हो जाए हमने कब कहा वो शख्स हमारा हो जाए बस इतना दिख जाए जो आंखों का गुजारा हो जाए आए हाय

बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी दिसो। अच्छा मूसा कोरी भाई कहते वाह वाह वाह वाह वाह जुगानो हलाए तो वर्दी। नसरुल्ला भाई कहते हैं शहर वयम तो फेस वॉश दिसा वठी इंद मता मिली वने मिली वेंदो मिली वेंदो तमा लाजमी वठजो। अच्छा अली डनो शमरानी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम मदीना मुनव्वरा सी, आप हमारा शो सुन रहे कहते कैसी हैं? मैं ठीक हूं जी, आप बताइए आप कैसे हैं? अच्छा टॉपिक ते एफ क्यू तू समझा ना बाबा, यो असा कोन असा वडा भी कोन समझी सकदा। मां तमाम सोचने की कोशिश कई पर मुंजी सोच इते कोन पहुंची। जिनजा तमाम फैन आयो ना नालो तो ए सा स्टार्ट थी। सो एफ वरी केड़ा हाँ भाई वीचारो किस्मत से फरमाइश कंदो आ सो न करे मान रखनो पंदो आ। अनवर भाई कहती मु समझो सिद्रा सिद्रा पई टहक दे न न न माई हुई बेचारी। अच्छा हैप्पी कहती आरजे आप हमसे सवाल पूछ रही है, हम सब ने जवाब दिया, अब आप बताएं आप सवाल का जवाब क्या देना चाहेंगी।

वैसे इहो कॾहिं कॾहिं मुंहिंजे ज़हन में इहो ख़्यालु ईंदो आहे जॾहिं मूंखे लॻंदो आहे त बाबा मुंहिंजी लाइफ केतिरी मुश्किल आहे, केॾो कुझु डिफिकल्ट हले पियो मुंहिंजे ज़िंदगी में. ईअं कॾहिं कॾहिं मूंखे जॾहिं फील थींदो आहे, सो मां सोचींदी आहियां त ई हुन ई ज़िंदगी में जेकर ईअं हुजे, असां हलिया वञूं बसि ज़िंदगी एक्सचेंज करण जो सीन जेको हुजे ऑन हुजे. पोइ मां सोचींदी आहियां वरी कॾहिं कॾहिं माण्हुनि खे ॾिसंदी आहियां या सोशल मीडिया ते अॼुकल्ह सभु कुझु ॾिसो था खुलम खुला आहे, सो उन्हनि खे वरी ॾिसी करे असांखे महसूसु थींदो त बाबा हीअ त असां खां वधीक आहे, झटि लॻो पियो आहे जान. सो असांजी ज़िंदगी उन्हनि खां करोड़ भेरा भली आहे, ईअं न? बिल्कुल. से कहिड़े बि हाल में अलाह रखे, बसि शुक्र अदा करणु घुरिजे. रिज़वान कहते हैं कि हर दर्द दिल दे जाया करो खामोशी के साथ, हम अपनों को नवाजिश ठहराया नहीं करते. वाह वाह, देश की ब्यूटी क्रीम भी बैठो बाबा. ममताज अली कहते हैं, चांद सा चेहरा, कातिल आंखें और रेशमी जुल्फे, दे के तेरे होंठ. अच्छा, मास्टर मंज़ूर जो गानो तव्हां ॿुधो नी, तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो. थैंक यू सो मच तव्हां सां गॾु आयो. अब्दुल गफ़ार भाई ख़ुश आमदीद. हेलो अली मुर्तज़ा कहते हैं, सलाम, गुड आफ्टरनून, आऊं बि अची वयुमि, रिक्वेस्ट हूअं कोन हलाईंदा, वरी कंदमि त कुझु माण्हुनि खे इतराज़ थींदो. सो शाम वारे शो में उधार रही यू ॾे. ओके ओके, सही आहे. हाणे माना तव्हां बि सॼे प्रोग्राम जो माहौल सम्झी विया आहियो, ईअं न चई सघिजे थो. अच्छा, चाचा ख़ालिद कहते हैं, ओके, ओके. सो ही वारो गानो असां ॿुधोसीं, हाणे असां ही वारो गानो ॿुधंदासीं. कामी शाह जी आवाज़ में गानो अथव, मां बि अॼु ही पहिरियों दफ़ो गानो ॿुधो, ऐं गानो ॿुधण खां पोइ मूंखे लॻो बाबा ही मां पंहिंजे प्रोग्राम में छो न हलायो.

नाला हकीकत हूंदा आहिनि, मूंखे अहिड़ा गाना वणंदा आहिनि, भले ॾुख जा हुजनि कहिड़ा, पर हुनजो म्यूज़िक भलो हुजणु घुरिजे, इहो शर्त आहे हिकिड़ो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई कोन, ॿुधायो त ख़बर त पवे. अच्छा वरियाम, हमारे साथ ही हम भी सुन रहे हैं आपका प्यारा शो एंड लवली सॉन्ग, थैंक यू वरियाम. अच्छा ये है, अब कहाँ जरूरत हाथों में पत्थर उठाने की, तोड़ने वाले तो जबान से ही दिल तोड़ दिया करते हैं. राम नोशीन सिद्रा, मेरा सॉन्ग प्ले करो ना, जाने बताया तो इंडियन गाने नहीं लगाते. ये मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम बाजी, सुठी मिठी लाइफ कीअं पई गुज़रे. गंबट शरीफ खां अली, लाजवाब आहे तव्हांजो शो. साइमा मंसूर जो गानो हलायो, मुंहिंजो गानो तव्हांखे भाउ सुभाणे ॿुधाईंदासीं, त अॼु प्रोग्राम जो टाइम ख़तम थियण ते पहुतो आहे. तव्हां मूंखे ॿुधायो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कई कोन, गंबट में मिले थी कोन.

राजा बक्तली सियाल भाई हेलो किशोर भाई कहते हैं कल शाम 5 बजे वाले शो जी लास्ट लिंक 8-10 दफा बुधी मन भरजे ही न तुझे शो में 5 गानो बुधन जो मजो ही अलग आला दिसो दिसो तदी माना ही मानू रोज रोज गाने जी फरमाइश कंदा नी

अच्छा वासु भाई आ चुके हैं, वासु भाई हेलो। अच्छा अली मुर्तजा कहते हैं चाचा, चाचा खालिद अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, एक आप ही हो जो इस एज में भी। हाँ जी खुश मिजाज तो हैं चाचा वाके, कहते असान जा कुराड़ा तो इन उम्र में हाई बीपी जा पेशेंट असान के याद वहां बिल्कुल सही गाल कही चाचो, मतलब पांची जिंदगी के एंजॉय करे पे चाचो, मस्त मलंग मानू आहे एंजॉय कियो चाचा, बिल्कुल माता सा गडो असा वाला कुराड़ा वाके रोगो कावड कंदा है उनन की बाबा बुधरायो रेडियो मुजो प्रोग्राम जो लसडियोस उनन के भी चाचे जड़ो करे चनी दासे।

ராத்த டீ ரூபா பாக்க நின்று சக்கந்தா ஏ கபூல் நீ கியா ஜாயேகா அக்தியாரலி சிந்தி ஹமே சுன் ரஹி ஹை வாலைக்கும் அஸ்ஸலாம் भाई तव्हां लास्ट में आयो असांजे प्रोग्राम में सो तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि बाबा प्रोग्राम खे पसंदि कंदा आहियो ऐं उन खां अलावा पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो जिन माण्हुनि अञा ताईं कोन कयो आहे एम अंसारी कहते हैं दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है हा बाबा ईअं लॻे थो अॼुकल्ह असांखे और उन खां अलावा हाणे असांजे प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक हलाईंदासीं जेको यकीनन चाचे जी पसंदि जो गानो हूंदो सो ही गानो बि इंजॉय कंदासीं ऐं असां वटि टाइम जेको आहे टेम बाबा सवा वञी थोरो अलाए छो मूंखे हिन ते खिल ईंदी आहे सो बिल्कुलु तव्हां बि अगरि अञा ताईं सोचो पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन वरिती अथव त बाबा टेम कोन्हे जल्दी वञो वठी अचो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते तव्हां अवेलेबल लाज़मी करायो वेंदे वेंदे तव्हांखे नंबर ॿुधाईंदी वेंदमि जिन माण्हू नंबर अञा ताईं कोन डायल कयो आहे नंबर ते कोन राबितो करे सघिया त नंबर नोट करे वठो नंबर आहे जनाब 03-12-50-25-907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 ही नंबर तव्हां डायल कयो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो चाहे उहा डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे डी स्किन जो फेस वॉश हुजे या वरी वाइट एज ब्यूटी क्रीम हुजे वाइट एज लवली क्रीम हुजे डॉक्टर पिंपल ट्यूब हुजे वाइट एज जो साबुण हुजे या वाइट एज जो फेस वॉश हुजे ही सभु प्रोडक्ट्स तव्हां जेको आहे न सो अवेलेबल कराए सघो था ऐं तव्हां वठो आराम सां तव्हांखे मिली वेंदा ऐं तव्हां इस्तेमालु कयो पोइ तव्हां सभु सुहिणा थी वेंदा

अच्छा नौशीन, आप मुझे कहाँ से सुन रही हैं ये भी बताइए। कहती 5 बजे वाला शो हमारे यहाँ नहीं चलता। भाई 5 बजे वाला शो सिर्फ लाड़काना वालों के लिए है। लाड़काने वाला डाढ़ा आला खुश नजीर। पर का गल ना ही तुम्हारे लाइव फेसबुक ते लाइव ही ना तो फेसबुक ता आराम से बोधी सको था सही। ओगरी सो प्रोग्राम में हाँ इजाजत दसन जो वक्त अची वो आए तवा का मोकल वठनासी बाबा मोकल साजी 5 बजे तक सागो तवा के ज्वाइन कयूं था। ओके सो तमाम भी का भी मुझे गाल दिल में न कजो जेका बुरी लगी हुजे समझो था। टी स्किन ब्यूटी क्रीम में वाइटी सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदा रहो। 5 बजे तमाके ज्वाइन कयो था ओते तमा आसा सा गडो जो सही आ ता जो पंजो प्रोग्राम आ सो मोकलानी ना है बाबू सिलसिला में सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: विच ओवर में जारी छिकताण मिस्र ताईं पहुची वई। मिस्री बंदरगाह ते ड्रोन हमलो, ब टैंकर तबाह। पर ॾेह मीडिया मूजिब मिस्री बंदरगाह दमयात ते ड्रोन हमलो थियो आहे, जंहिंजे नतीजे में आफ़्रिकी बहरी बेड़े समेत ब बेड़ा मुतासिर थिया आहिनि। बंदरगाह ते अमेरिका जे फ्लोटिंग टैंकर खे निशानो बणायो वियो। अमेरिकी फ़ौज जा हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते हमला। ईरानी शहर अहवाज़ बोशहर, बंदर अब्बास ऐं कशम ते खे निशानो बणायो वियो। कशम में अमेरिकी हमले जे नतीजे में टे शहरी शहीद, ब ज़ख़्मी। ईरान जे बि अमेरिका ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते मिज़ाइल हमला। अमेरिकी फ़ौज मूजिब विच ओभर में अमेरिकी फ़ौजनि ते हमले जे जवाब में ईरान ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई। ईरान जे बि अमेरिका ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई। उर्दन में अमेरिकी अॾे ते हमलो। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल हमला नाकाम बणाइण जी दावा। सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर जूं अमेरिकी सदर ऐं नायब सदर सां मुलाक़ातूं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो ख़ासि पैगाम बि पहुचायो। विच ओभर में जारी छिकताण ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर भरियो। सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त इराक मां वेढ़ाक ग्रुपनि सऊदीअ ते हमिलो करे हद पार कई, जंहिं सबब दिफ़ा में इराक अंदर कार्रवायूं कयूं। इराक में कयल कार्रवाई जो मक़सदु जंग या छिकताण में वाद न आहे। सऊदी छिकताण में वाद वाद ॻाल्हियुनि ज़रिए छिकताण जो ख़ात्मो चाहे थो। ईरानी क़ौम नाइंसाफ़ी ऐं ज़ुल्म ख़िलाफ़ कॾहिं बि कंध न झुकाईंदी। असां दुश्मन ख़िलाफ़ मज़ाहमत जो नओं मिसाल क़ाइमु कयो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशचान चयो आहे ईरानी क़ौम पंहिंजनि शहरनि ते ज़ुल्म नथी करे सघे। ईरानी क़ौम दुश्मन ख़िलाफ़ मुतहद ऐं साबित क़दम रहंदी। पाकिस्तान अमेरिका ऐं ईरान खां हमला रोके ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो करे छॾियो। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त अबना हरमुज़ जी बहालीअ ते ॻाल्हियूं जारी आहिनि। वज़ीर आज़म सऊदी अरब सां न ॻाल्हायो आहे। धुरियूं हमला बंदि करे सहप ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि। तकरार ॻाल्हि कयो वञे। सदर आसिफ ज़रदारीअ सां वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी कराची में मुलाक़ात। बलूचिस्तान ऐं केपीके समेत मुल्क जे अमन अमान जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन बाबति सदर खे आगाह कयो। सदर पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फोर्सिस जी सलाहियतुनि जी वाखाण। मुलाक़ात दौरान सूबाई वज़ीर अली हसन ज़रदारी बि मौजूदु हो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि डिजिटल सिंध बाबति इजलास। एम टी सी एम डी मेजर जनरल रिटायर्ड अली फरहान जी बि शिरकत। मुराद अली शाह पारां जदीद तरीन टे सूबाई डेटा सेंटर ठाहिण जो हुकुम। अमलदारनि खे डेटा सेंटर बाबति जाम मनसूबो जोड़ण जी हिदायत। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध डिजिटल गवर्नर्स ऐं टेक्नोलॉजी ते ॿधल अवामी इंतिज़ामिया जे नए दौर में दाख़िल थी रहियो आहे। जदीद सूबाई डेटा सेंटर सिंध जे डिजिटल तब्दीलीअ जो बुनियाद बणंदा।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप। ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज्ड जापानीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल थी कार कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003
4: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड़ बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

इरशाद आटू।

0: आप सुन रहे थे
1: हाई क्वालिटी पीसीबी।

0: पाकिस्तान अमेरिका ईरान का हमला रोके गालियों शुरू करण जो मुतालबो करे छो पर तर्जुमान है अबना हरमज़ की बहाली से गालियों जारी आहिन। वजीर आजम सऊदी अरब से भी गालायो है धुरी हमला बंद कर सह पे सब्र जो मुजाहरों कन तकरार गालियों जरिए हल कयो वने। विच ओभर में जारी छिकताण मिस्र ताईं पहुंची वही। मिस्री बंदरगाह ते ड्रोन हमलो ब टैंकर तबाह पर ॾेई मीडिया मौजूद मिस्री बंदरगाह दमिया ते ड्रोन हमलो थियो आहे जंहिंजे नतीजे में अमेरिकी बहरी बेड़े समेत ब बेड़ा मुतासिर थिया आहिनि। बंदरगाह ते अमेरिकी फ्लोटिंग टैंकर खे निशानो बणायो वियो। अमेरिकी फौज जा एक भेरो बीहर ईरान ते हमला ईरानी शहर एवाज बो शहर बंदर अब्बास ए कशम के निशानो बनाया वयो। कशम में अमेरिकी हमले के नतीजे में टे शहरी शहीद ब जख्मी। ईरान के वे अमेरिका खिलाफ जवाबी कार्रवाई। कुर्दन में अमेरिकी अड्डे ते मिजाइल हमला। अमेरिकी फौज मौजूद विच ओभर में अमेरिकी फौजन ते हमले के जवाब में ईरान खिलाफ कार्रवाई कई वही। ईरान के बे अमेरिका खिलाफ जवाबी कार्रवाई। उर्दन में अमेरिकी अड्डे ते हमलो। उर्दन पारा ईरानी मिजाइल हमला नाकाम बनाने की दावा। ईरान के पासदार इनकलाब है अल्लाह की मदद से अज जहरियत कंदड़न के वधिक सजा डनी वी। सऊदी अरब के वजीर जू अमेरिकी सदर रह नायब सदर से मुलाकातू। सऊदी विलियत बिन मोहम्मद सलमान जो खास पैगाम पहुंचाया वो। विच ओभर में जारी छिकताण गाल जरिए हल थे जोर भरे वो। सऊदी दिफा वाले वजीर है इराक में वेड़ाक ग्रुपन सऊदी से हमलो कर हद पार कई है जै सबब दिफा में इराक अंदर कार्रवाई क्यों। इराक में कल कार्रवाई जो मकसद जंग या छिकताण में वाद ना है। सऊदी छिकताण में वाद गाल जरिए छिकताण जो खात्मो चाहे तो। कोयते ईरान जो चीनी कंपनी के ऑफिस से हमलो एक मजदूर मार वो। कोयती दिफा वाले वजारत मौजूद कोयत के उत्तर वाले इलाके में मौजूद चीनी कंपनी से ईरान पारा हमलो कयो वो। हमले के नतीजे में इमारत के घणो नुकसान पहुंतो है। एक पोरेत मार वो है। वजीर आजम की सदारत हेठ परे में रहंदड़ पाकिस्तानी बाबत अहम इजलास। परे वजारत पारा सफारतखान पारा शहर के मिलंदड़ सहूलत बाबत ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ पारा परे में रहंदड़ पाकिस्तानी लाए सफारतखान में सहूलतू वधायण की हिदायत। शहबाज शरीफ चो तो परे में रहंदड़ पाकिस्तानी मुल्क जो असासो आहिन। परे में रहंदड़ पाकिस्तानी के मसलन के अवलियत की बुनियाद से हल कयो वञे। पासपोर्ट्स ए सुणप कार्ड जा मसला भी तुरंत हल थियण घुर्जन। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी की कराची में मुलाकात। बलूचिस्तान केपीके समेत मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल से गाल। मोहसिन नकवी दहशतगर्दन खिलाफ जारी ऑपरेशन बाबत सदर के आगाह कर। सदर पारा दहशतगर्दन खिलाफ फोर्स के सलाहतन की वाखाण। मुलाकात दौरान सूबाई वजीर अली हसन जरदारी भी मौजूद हो। गुजरियल माली साल दौरान अवाम के बिजली बिल्स से टैक्स मद में 476 अरब रुपया उगाड़न जो इंकशाफ। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के ब्रीफिंग दींदे एफबीआर अमलदारन बुधायो तो बिजली बिल्स से 351 अरब रुपया 124 अरब रुपया इनकम टैक्स मद में उगाड़ा वया। होल्डिंग टैक्स मद में सनती वापेदारन का 68 अरब रुपया, कमर्शियल वापेदारन का 52 अरब ए घरेलू वापेदारन का 6 अरब रुपया उगाड़ा वया। बेन टैक्सिस के मद में अवाम का 300 अरब का भी उगाड़ी कई वही। वरे वजीर की सदारत हे डिजिटल सिंध बाबत इजलास। एनटीसीएमडी मैनेजर जनरल रिटायर्ड अली फरहान की भी शिरकत। मुराद अली शाह पारा जदीद तरीन टे सूबाई सेंटर ठाण जो हुकुम अमलदारन के डेटा सेंटर्स बाबत जामा मनसूबो जोड़ने की हिदायत। मुराद अली शाह है सिंध डिजिटल गवर्नेंस टेक्नोलॉजी से बदल अवामी इंतजाम के नए दौर में दाखिल थी रो है। जदीद सूबाई डेटा सेंटर सिंध के डिजिटल तब्दीली जो बुनियाद बणबा। पंजाब के शहर लाहौर में घर की छित की।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 03013992836।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहिक वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
3: मोटी इंदा से कादे विंदा से

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान अमरीका ईरान का हमला रोके बीहर गाल शुरू करण जो मुतालबो कर छो पर एक अर्जमान तायर हुसैन इंदिरा भी है खिते की सूरत हाल नाजुक है। अमरीका ईरान के बीहर इस्लामाबाद माहदे डां वापस आने की कोशिश कर रहा हूं। सफातकारी गाल अगते वतण जो वाहिद रस्तो आन दुरीन से आपदा हुरमुस की बहाली ए सूरत हाल मामूल से आने लाय गाल जारी है। दुरीन के इस्लामाबाद माहदे तहत टेक्निकल सतह वाली गाल वापस अचान घुर्जे।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जीअं मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-3992836।
6: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1556-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
6: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मिरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मिरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: हॾियूं टेड़ियूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं पोइ उहे जेको आहे सो ॿियूं बीमारी में मुबतला थी वेंदो आहे। इन जे करे अहिड़े क़िस्म जी बीमारी में जेकॾहिं पेशेंट थिए थो त असां वटि उनजो ट्रीटमेंट मौजूदु आहे ऐं रूबरू ॾेखारे सघूं था।
1: दोस्तो, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि, हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, त हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रे लाइव कॉल शामिल थी सघो था 0301-91-8051।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद, मां अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जरूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले की वो जाहिर करें हमें पूरी करनी चाहिए।
2: केर वञे या न, असांजो निज़ाम तबाह थी चुको आहे। जेसि ताईं नवां सूबा या यूनिट्स न ठहंदा तेसि ताईं शयूं ठीक न थींदियूं। नवनि यूनिट्स ऐं सूबनि खां वठी पंहिंजे मुल्क जा मसला हल करणा पवंदा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबो या जेको बि नालो ॾियो उनखे अवामी सतह ते खणी वञणो पवंदो। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जो इस्लामाबाद में इकोनॉमिक समिट खे ख़िताब। मोहसिन नक़वी चयो त आम माण्हू नंढनि नंढनि शयुनि लाइ धिका खाई रहिया आहिनि। ज़री मुल्क हुजण बावजूद कणक ॿाहिरां घुराइणी पवे थी। नौजवाननि जो रुगो हिकु मुतालबो आहे त खेनि मेरिट ते मोकिया ॾिना वञनि। हाणे हर सूरत में नौजवाननि खे मोकिया ॾियणा पवंदा। जेकॾहिं काक्रोच गॾिजी उथी पिया त सभु कुझु ऊंधो थी वेंदो। इहो न समझो त तव्हांखे इलेक्शन चोरी करण ॾींदासीं। कश्मीर में असांजो मैंडेट चोरी थियो त वफ़ाक में तव्हांजी उबती गणप शुरू थी वेंदी। इंसाफ़ कंदव त इंसाफ़ थींदो, धांधली कंदव त तव्हांजो बि ख़ैर न आहे। मीरपुर इलेक्शन में धांधली जूं वीडियोस बि साम्हूं आयूं। अफ़सोस आहे जो सबूत ॾियण बावजूद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त हू PTI जा मम्मी डैडी वारा न आहिनि, हुननि वटि ज्याला मौजूद आहिनि। अहिड़ा ज्याला आहिनि जिन ज़िया तोड़ी मुशरफ़ जो मुक़ाबिलो कयो ऐं ही सभु शींहं जे शिकार जा माहिर थी चुका आहिनि। PTI जे दोस्तनि खे बाइकाट वारी सियासत छॾणु घुर्जे। आज़ाद कश्मीर असेंबली बि पाकिस्तानी रियासत खां ट्रुथ कमीशन जो मुतालबो कयो आहे। एहतजाज कंदड़ कमीशन क़बूल कनि, इनशाला इंसाफ़ थींदो।

0: पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान खां हमला रोके ॿीहर ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो करे छॾियो। परे रजमान तारिस अंद्रा बि चयो आहे त ख़िते जी सूरतहाल नाज़ुक आहे। अमरीका ऐं ईरान खे ॿीहर इस्लामाबाद मुआहिदे ॾांहुं वापसि आणण जी कोशिश करे रहिया आहियूं। सिफारतकारी ऐं ॻाल्हियूं ई अॻिते वधण जो वाहिद रस्तो आहिनि। धुरियन सां आपनाए हुरमुस जी बहाली ऐं सूरतहाल मामूल ते आणण लाइ ॻाल्हियूं जारी आहिनि। धुरियन खे इस्लामाबाद मुआहिदे ते टेक्निकल सतह वारियुनि ॻाल्हियुनि ॾांहुं वापसि अचणु घुर्जे। अमरीकी फ़ौज हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते हमला। ईरानी शहर ज़ंजान, अहवाज, बोशहर, बदरबास ऐं कशम खे निशानो बणायो वियो। ज़ंजान में पासदार इनकलाब जा टे फ़ौजी ऐं कशम में टे शहरी शहीद। ईरान जी बि अमरीका ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई। उर्दन में अमरीकी अॾे ते मिज़ाइल हमला। अमरीका जी TF-35 विढ़ाक जहाज तबाह करण जी दावा। अमरीकी फ़ौज मूजिबि विच ओभर में अमरीकी फ़ौजनि ते हमले जे जवाब में ईरान ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल हमला नाकाम बणण जी दावा। ईरान जे पासदार इनकलाब चयो आहे त अलाह जी मदद सां अॼु जारियत कंदड़ खे वधीक सज़ा ॾिनी वेंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: 0306-16-23-793.
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003.
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: It's 7:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दो उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। उसके लिए जरूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें हमें पूरी करनी चाहिए।
2: केर बने या ना असांजो निजाम तबाह थी चुको है। जेस ताई नवा सूबा या यूनिट्स न ठहंदा तेस ताई शयूं ठीक न थींदियूं। नवन यूनिट्स ऐं सूबन खां वठी पंहिंजे मुल्क जा मसला हल करणा पवंदा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबो या जेको भी नालो ॾियो उनखे अवामी सतह ते खणी वञणो पवंदो। वफ़ाक़ी ख़रू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो इस्लामाबाद में इकनॉमिक समिट खे ख़िताब। मोहसिन नक़वी चयो त आम माण्हू नंढियुनि नंढियुनि शयुनि लाइ धिका खाई रहिया आहिनि। ज़रई मुल्क हुजण बावजूद कणिक ॿाहिरां घुराइणी पवे थी। नौजवाननि जो रुगो हिकु मुतालबो आहे त खेनि मेरिट ते मौकिया ॾिना वञनि। हाणे हर सूरत में खेनि मौकिया ॾियणा पवंदा। नौजवान चओ या काक्रोच, ही गॾिजी उथी पिया त सभु कुझु ऊंधो थी वेंदो। इहो न समझो त तव्हांखे इलेक्शन चोरी करण ॾींदासीं। कश्मीर में असांजो मैंडेट चोरी थियो त वफ़ाक में तव्हांजी उबती ॻणप शुरू थी वेंदी। इंसाफ़ कंदव त इंसाफ़ थींदो, धांधली कंदव त तव्हांजो बि ख़ैर नाहे। मीरपुर इलेक्शन में धांधली जूं वीडियोज़ बि साम्हूं आयूं। अफ़सोस आहे जो सबूत ॾियण बावजूद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी जो मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुट्टो सरदारी चयो त हू PTI जा मम्मी डैडी वारा नाहिनि। उन्हनि वटि जियाला मौजूद आहिनि, अहिड़ा जियाला आहिनि जिन ज़िया तोड़ी मुशरफ जो मुक़ाबिलो कयो ऐं ही सभु शींहं जे शिकार जा माहिर थी चुका आहिनि। PTI जा दोस्त बि बाइकाट वारी सियासत छॾणु घुर्जे। आज़ाद कश्मीर असेंबली बि पाकिस्तानी रियासत खां ट्रुथ कमीशन जो मुतालबो कयो आहे। एहतजाज कंदड़ कमीशन क़बूल कान, इनशाला इंसाफ़ थींदो। पाकिस्तान अमेरिका ईरान खां हमला रोके ॿीहर ॻाल्हियूं करण जो मुतालबो करे छॾियो। परे तर्जुमान तारिक हुसैन अंतराबी चयो आहे त ख़िते जी सूरत हाल नाज़ुक आहे। अमेरिका ईरान खे ॿीहर इस्लामाबाद माहिदे ॾांहुं वापसि आणण जी कोशिश करे रहिया आहियूं। सिफारतकारी ऐं ॻाल्हियूं ई अॻिते वधण जो वाहिद रस्तो आहिनि। धुरियुनि सां आपनाए हुरमुस जी बहाली ऐं सूरत हाल मामूल ते आणण लाइ ॻाल्हियूं जारी आहिनि। धुरियुनि खे इस्लामाबाद माहिदे तहत टेक्निकल सतह वारियुनि ॻाल्हियुनि ॾांहुं वापसि अचणु घुर्जे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
7: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
7: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
8: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
9: अस्सलाम वालेकुम अदा।
10: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न अदा।
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
9: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
10: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
9: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
10: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
11: 03013992836।

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट, अंबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307 359 2120।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दो, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। उसके लिए जरूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें हमें पूरी करनी चाहिए।
1: वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी मुल्क के समूरन मसलन जो हल नवन सूबन की करार दई छो। इस्लामाबाद में इकोनॉमिक समिट के खिताब कदे मोहसिन नक़वी केर मने या न असो निज़ाम तबाह थी चुको है। जेस तई नवा सूबा या यूनिट्स न ठहंदा तेस तई शयूं ठीक न थींदियूं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबा या जेको भी नालो दियो उनके अवामी सतह से खणी वञणो पवंदो। आम माण्हू नंढियन नंढियन शयुनि लाइ धिका खाई रहा आहिनि। सरे ही मुल्क हुजण बावजूद कणक ॿाहिरां घुराणी पवे थी। नौजवान जो रुगो एक मुतालबो आहे त खेन मेरिट ते मुखिया ॾिना वञनि। हाणे हर सूरत में खेन मुखिया ॾियणा पवंदा। नौजवान चओ या काकरोच, ही घरजी उथी पिया त सभु कुझु ऊंधो थी पवंदो।

मार्शल भी बार बार चई चुको है तो जमहूरियत के जी रेल स्टैंड न डिनो वो पीटीआई बानी के हवाले से फैसलो अदालत क्यों वफाकी गरु वजीर मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गाल बोल मोहसिन नकवी चयो तो निजाम बेहतर बनने लाय सभी सियासी पार्टियों के गड थियण पवो जो नून लीग ए पीपी नंबर पीटीआई के भी निजाम ठीक करण में गडण पवो जेस तई सियासतदान निजाम ठीक न कदा तेस तई मेहनत जो को भी फायदो नो इन वक्त हर सियासी पार्टी रुगो पैं बारे में सोची रही है और वफाकी गरु वजीर रहंदुस पर वजीर न पो थिया।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल. अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट. बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज. अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ. आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर. 0300-338-5569.
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर. और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94.

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो हिक नौ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब होयो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।

0: इहो न समझो त तव्हांखे इलेक्शन चोरी करण ॾींदासीं। कश्मीर में असांजो मैंडेट चोरी थियो त वफ़ाक में तव्हांजी उबती गणप शुरू थी वेंदी। इंसाफ़ कंदव त इंसाफ़ थींदो, धांधली कंदव त तव्हांजो बि ख़ैर न आहे। मीरपुर इलेक्शन में धांधली जूं वीडियोस बि साम्हूं आयूं। अफ़सोस आहे जो सबूत ॾियण बावजूद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुट्टो सरदारी जो मुज़फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब। बिलाल भुट्टो चयो त हू पीटीआई जा मम्मी डैडी वारा न आहिनि, हुननि वटि ज़ियाला मौजूद आहिनि। अहिड़ा ज़ियाला आहिनि जिन ज़िया तोड़ी मुशरफ जो मुक़ाबलो कयो ऐं ही सभु शींहं जे शिकार जा माहिर थी चुका आहिनि। पीटीआई जे दोस्तनि खे बाइकाट वारी सियासत छॾणु घुर्जे। आज़ाद कश्मीर असेंबली बि पाकिस्तानी रियासत खां ट्रुथ कमीशन जो मुतालबो कयो आहे। एहतजाज कंदड़ कमीशन क़बूल कान, इनशाला इंसाफ थींदो।
1: हल ठीक है, मैं नहीं कहता कि इसको किस तरह लेके जाए, किस तरीके से लेके जाए, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। आप जब तक वो नहीं लेके जाएंगे, आप जब तक आपके सारे चैनल जहां बैठे हुए जितने धक्के आप लोग खा रहे हैं अपनी छोटी छोटी चीज के लिए, ये आपको अपने इलाके में अवेलेबल होने चाहिए। आपने कहा कि हमारी इतनी जबरदस्त सब इंडस्ट्री मौजूद है जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे। आप लोग इसके लिए जितनी मर्जी पिछले 4-5 साल से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन वही की वही चीज खड़ी है। की वजह यह है कि उनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं। लोग अपने सूबे के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे।
0: वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी मुल्क जे समूरनि मसलनि जो हल नवनि सूबनि खे करार ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में इकनॉमिक समिट खे ख़िताब कंदे मोहसिन नक़वी चयो त केरु वञे या न, असांजो निज़ाम तबाह थी चुको आहे। जेसि ताईं नवां सूबा या यूनिट्स न ठहंदा, तेसि ताईं शयूं ठीक न थींदियूं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबा या जेको बि नालो ॾियो, हुनखे अवामी सतह ते खणी वञणो पवंदो। आम नंढनि शयुनि लाइ धिका खाई रहिया आहिनि। ज़रई मुल्क हुजण बावजूद कणिक पवे थी। नौजवाननि जो रुगो हिकु मुतालबो आहे त खेनि मेरिट ते मोकिलिया ॾिना वञनि। हाणे हर सूरत में खेनि मोकिलिया ॾियणा पवंदा। नौजवान चओ या काकरोच, ही गॾिजी उथी पिया त सभु कुझु ऊंधो थी पवंदो। सदारती निज़ाम जी ॻाल्हि न पियो करियां, हुकूमत पंहिंजो मुदो पूरो कंदी। फील्ड मार्शल बि बार बार चई चुको आहे त जमहूरियत खे डी रियल थियण न ॾिनो वेंदो। पीटीआई बानी जे हवाले सां फैसलो अदालतूं कंदियूं। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी इस्लामाबाद में मीडिया सां गैर रस्मी ॻाल्हि ॿोल। मोहसिन नक़वी चयो त निज़ाम बहितर बणाइण लाइ सभिनी सियासी पार्टियुनि खे गॾु थियणो पवंदो। रुगो नून लीग ऐं पीपी न पर पीटीआई खे बि निज़ाम ठीक करण में गॾजणो पवंदो। जेसि ताईं सियासतदान निज़ाम ठीक न कंदा, तेसि ताईं महिनत जो को बि फ़ाइदो न थींदो। हिन वक़्त
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।